बोधराज खोरवाल जी ने व्हाट्सएप मैसेज किया है, लिख रहे हैं कि नाज जी नमस्कार। नमस्कार, आपकी मधुर आवाज में दिल का मेलबॉक्स प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैसेज शामिल हो या ना हो कोई बात नहीं, अरे इसी बात ने तो दिल छू लिया और मैंने कर लिया आपका मैसेज शामिल। चलिए अगला मैसेज ले लेते हैं गौरी शंकर जी का, और लिख रहे हैं कि बेटा प्रोग्राम ही नहीं आपके बोलने का अंदाज भी जानदार है, यानी कि तबीयत खुश हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र जटोलिया जी ने लिखा है अभी अभी कुछ देर पहले कि रेडियो की धुन हो या दिल की आवाज, हर जगह बस तुम्हारा ही अंदाज। नाम है नाज तो बात भी खास होगी, तुम्हारी मुस्कान में ही पूरी महफिल की मिठास होगी। क्या बात है, दिल्ली नागलोई से बहुत ही प्यारा ईमेल मिला है चारू जटोलिया के साथ। राजेंद्र जटोलिया और उषा जटोलिया शामिल हैं इस ईमेल में। एक और मैसेज आया है, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया कि क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। क्या बात है, दिल खुश कर दिया जनाब। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल के साथ ये मैसेज हमारे पास आया। एक और मैसेज आ गया है, बड़ा ही प्यारा मैसेज है ये भी। सुना है आज समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। क्या बात है, नाज मैडम नमस्कार, और आज के सवाल का जवाब भी लिखा है, सही है या गलत थोड़ी देर में पता चल जाएगा। भारत भूषण जी का ये मैसेज अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष के साथ ये मैसेज

हमें लिखा है कहां से, हाँ व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, और इन्होंने भी लिख भेजा है आज के सवाल का जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब एक और फरमाइश पूरी करने का आ गया है वक्त। बहुत ही प्यारा गाना है और इसकी जो फरमाइश हमारे पास आई है वो आई है रूपेश संघई जी की ओर से। जी हाँ बिल्कुल सही नाम लिया है मैंने, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार इस रिक्वेस्ट में शामिल है। बहुत ही प्यारा गाना है हम प्यार करने वाले, दिल फिल्म का सुपरहिट सॉन्ग, उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल जी की खूबसूरत जुगलबंदी। चलिए सुनते हैं और फिर बातें करते हैं।

वक्त से न हारे जाते हैं न जीता जाता है, वक्त से सीखा जाता है। वक्त खुशबू है बिखर जाता है। डियर नाज को ढेर सारा प्यार स्नेह। आई मिस्ड यू अ लॉट, टुडे आई गॉट यू एंड आई एम सो हैप्पी डियर, बट आई एम नॉट सो हैप्पी। अनु जी नाराज हूं मैं आपसे। जी हाँ, म्यूजिकल दिल लगी में सवाल पूछा था मैंने और आपको फोन भी लगाया था,

लकी लिसनर थी आप आज की, बट आपका फोन लगा ही नहीं। कम से कम 10 बार ट्राई किया आपका फोन, बिजी जा रहा था। एक छोटी सी गुजारिश है कि जब भी आप सवाल का जवाब देते हैं तो अपने फोन को अपने पास रखिए, खासकर म्यूजिकल दिल लगी में, ताकि आपसे बात हो सके। चले कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, फिर से कोशिश करेंगे। और अभी शामिल करेंगे अगला मैसेज जो आया है गांधी चौक बाड़मेर से। बबलेश पंवार जी लिख रहे हैं और बड़ी प्यारी बात लिख रहे हैं कि मेरे दिल के एक कोने में एक छोटा सा मेल बॉक्स है जहां यादों की पुरानी चिट्ठियां आज भी धूल फांकती हैं। कुछ खत हैं अधूरी ख्वाहिशों के जो कभी पत्ते तक ना पहुंच सके, कुछ लिफाफे हैं उन आंसुओं के जो आंखों से कभी बह ना सके। वहां हर रोज एक नया संदेश आता है, कभी उम्मीद का कभी उदासी का, पर ताला लगा है उस पर वक्त का और चाबी खो गई है शायद कहीं। मैं अक्सर उसे खोलना चाहता हूं, उन अनकहे शब्दों को पढ़ना चाहता हूं जो मैंने दुनिया से छुपा रखे हैं, पर डरता हूं कि कहीं वो जख्म फिर से उभर आए तो क्या होगा। ये मेल बॉक्स ही तो है मेरा असली पता, जहां मैं खुद से मिलता हूं, दुनिया के शोर से दूर अपनी तन्हाइयों में खिल जाता हूं। क्या बात है, दिल छू लिया जी आपने। बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार के साथ गांधी चौक बाड़मेर से बहुत बहुत बहुत थैंक यू आपको इस खूबसूरत मैसेज के लिए। और अब क्योंकि घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है तो मुझे बताना होगा आज के सवाल का जवाब। बात करेंगे उस ट्रैक की जिसे आप में से ज्यादातर लिसनर्स ने पहचान भी लिया है और गीत के बोल लिखकर भेज भी दिए हैं। जी हाँ, साल 1989 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म राम लखन से है यह सॉन्ग, जो उस दौर से लेकर अब तक हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। एंड फॉर श्योर हमारी प्लेलिस्ट्स का हिस्सा तो ये है ही। मनहर उदास और अनुराधा पोडवाल की रूहानी आवाजें आपको सुनाई देती हैं और टीवी स्क्रीन पर जबरदस्त केमिस्ट्री आप देखते हैं जैकी श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया की। गीत के बोल थे आनंद बख्शी साहब के और ईयर कैचिंग म्यूजिक आप सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी का। वैसे तो इस मूवी का हर गाना हिट था, लेकिन स्पेशली ये सॉन्ग कुछ अलग ही था। तो अब नहीं करूंगी देर और शामिल करूंगी वो सभी नाम जिन्होंने दिया बिल्कुल सही जवाब। संदीप मक्कर जलंधर पंजाब से, नवाब अहमद भारती बल्ली मारन से, अनु बरजात्या मुंबई से, जॉन डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से, कौशल्या देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, उग्रसेन यादव जी नई दिल्ली से। उम्मीद है अब आपकी नाराजगी दूर हो गई होगी। राजेश कुमार हर्रई से, सईद अब्बासी बुलंदशहर से, धर्मेंद्र छीपा भोपालगढ़ राजस्थान से, पूनम नांगलोई से, फारूक अली फैराज गुन्नौर यूपी से, साहिल डार उर्फी जान के साथ श्रीनगर कश्मीर से, चिन्मय महतो कदमा जमशेदपुर से, राम ऑप्टिकल पलवल से, कृष्ण कुमार गुप्ता बटीपुरा महोबा से। और ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं सारे नाम शामिल कर पाऊं, क्योंकि लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब आप सब दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी मैसेजेस के लिए। और चलिए एक दो मैसेज मैं जल्दी से और शामिल कर लेती हूं। आफताब अंसारी रियाज अंसारी के साथ लिख रहे हैं और इन्होंने भी दिया है आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। और इसके साथ ही किसने दिया है, एक मैसेज और आया है, अगली बार एफएम गोल्ड पर कब मिलोगे आप, हम पूरी तैयारी से आएंगे क्योंकि हम कच्चे खिलाड़ी हैं। तो पक्के खिलाड़ी बन जाइए, एफएम गोल्ड तो आपकी सेवा में हाजिर ही है, रोज आपको सुनना है दिल का मेल बॉक्स एफएम गोल्ड के साथ। और चलिए इसी के साथ अब एंजॉय करते हैं वो ब्यूटीफुल ट्रैक जो था आज के सवाल का जवाब भी। और मुलाकात अब आपसे होगी ठीक 11:10 पर, कार्यक्रम होगा तस्वीर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापट्टे के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोहरीघाट औडिहार यात्री पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। इससे मऊ और गाजीपुर जिलों के यात्रियों को किफायती और सुरक्षित रेल सेवा उपलब्ध होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस रेल सेवा का विस्तार जल्द ही वाराणसी तक किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख चार लेन का गलियारा गंगा के दक्षिण में प्रयागराज कानपुर आगरा दिल्ली मार्ग के साथ विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद

बिन जैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान के फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 474 अंक लुढ़ककर 75,541 पर, जबकि निफ्टी 126 अंक की गिरावट के साथ 23,689 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सांवला रंग है और थोड़ा कड़क मिजाज है। सुनो, तुम पसंद हो मुझे, तुम्हारा चाय सा स्वाद है। और सुबह की अधूरी नींद में बस इतनी सी राहत चाहिए, जहन में तेरी यादें और हाथ में एक कॉफी का कप चाहिए। और ये अगर मिल जाए तो बस और क्या चाहिए। सच में क्या? और सोचिए, अगर आप पहुंच जाए एक ऐसी जगह जहां आंखों के सामने हो खूबसूरत पहाड़ और फिजा में खुली हो चाय और कॉफी के बागानों से निकलती भीनी भीनी खुशबू, तो कैसा हो? मौसम मस्ताना और साथ किसी अपने का, जैसे आपका और हमारा।

रास्ता भले ही अब तक अनजान है आपके लिए, लेकिन FM गोल्ड और मुझसे आपकी पहचान तो पहले ही हो चुकी है। प्रोग्राम शुरू हो चुका है तस्वीर, जहां आपकी दोस्त और घुमक्कड़ दोस्त नाज है आपके साथ। और कहां है आज का प्लान, इसका हिंट मैंने आपको इस सॉन्ग से पहले दिया था, जिसे सुनकर अंदाजा लगाया है जयराम खोरवाल जी ने कि आज का शहर शायद कश्मीर हो सकता है। अनु बरजात्या जी बोल रही हैं कि दार्जिलिंग हो सकता है। माफ कीजिएगा, दोनों ही जवाब गलत है। कोई बात नहीं, अगर अभी तक नहीं बूझे तो अगला क्लू सुन लीजिए, शायद इसके बाद कुछ सूझे। तमिलनाडु के खूबसूरत नीलगिरी जिले में मौजूद है ये हिल स्टेशन, चाय और कॉफी लवर्स के लिए ड्रीम स्पेस, एडवेंचर के शौकीनों के लिए मस्ट गोइंग प्लेस, जहां नेचुरल ब्यूटी का कोटा कभी कम नहीं पड़ता। और खूबसूरत कोटा गिरी के नाम से जिसे जानती है पूरी जनता। कैसे पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद क्या करेंगे, सब पर हो की बात, लेकिन इस ट्रैक में खोकर फिर से वापस आने के बाद।

हाँ जी, वापस आ गए हैं। तो बता दूं आपको कि सिलसिला तस्वीर का अभी भी जारी है, जिसमें शामिल हैं आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के जरिए, और मैं यानी नाज आज आपको लेकर आ गई हूँ तमिलनाडु के नीलगिरी में मौजूद खूबसूरत कोटागिरी में। ऊटी और कुन्नूर के बाद यहाँ का तीसरा सबसे बड़ा और मशहूर हिल स्टेशन है ये, जिसे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के सबसे बड़े पहाड़ी इलाकों में भी गिना जाता है। ऊटी से करीब 32 किलोमीटर दूर, यानी टैक्सी से करीब 1 से 1.5 घंटा, कुन्नूर से सिर्फ 21 किलोमीटर यानी सिर्फ 45 मिनट, मदुरई से करीब 5.5 घंटों का सफर, और कोयम्बटूर से अगर आप जाएंगे तो डिस्टेंस पड़ेगा 70 किलोमीटर और टाइम लगेगा 2.5 से 3 घंटों का। और अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो यही लास्ट वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे, क्योंकि आपको लैंड करना होगा कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से आपको टैक्सी या बस दोनों कोटागिरी के लिए मिल जाएंगी आराम से। अच्छा, बाय ट्रेन आने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक मेट्टुपालयम, और ये कोटागिरी से करीब 35 किलोमीटर दूर है, और दूसरा है कुन्नूर रेलवे स्टेशन, जहां से आप नीलगिरी माउंटेन रेलवे की टॉय ट्रेन का हाथ थाम सकते हैं।

और अपने इस सफर को और भी यादगार और खूबसूरत बना सकते हैं। फिलहाल सुनिए ये अगला गाना, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कोटागिरी के अंदर कैसे और कहां-कहां करना है आना और जाना।

देखिए, ऑनलाइन एप्स के जरिए तो कैब बुक नहीं कर पाएंगे आप कोटागिरी में, लेकिन लोकल टैक्सीज और बसेस की आपको कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, ये पक्की बात है। और उतनी ही पक्की बात ये भी है कि एक बार आप कोटागिरी पहुंच गए ना, तो टेंशन का कोटा हो जाएगा गुल और सुकून का टैंकर हो जाएगा फुल, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे करीब 30,000 एकड़ में फैले चाय और कॉफी के खुशबू।

दार बागान, और जिसका बेस्ट एक्सपीरियंस आपको यहाँ ड्राइविंग के जरिए ही लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नीलगिरी पठार के पूर्वी किनारे पर उगाई जाने वाली यहाँ की चाय का स्वाद ऊटी के ऊपरी बागानों की चाय से थोड़ा अलग है। ऊटी से डोडा बेट्टा की तरफ जाने वाला करीब 15 से 20 किलोमीटर का एक रास्ता है जो इन्हीं चाय के बागानों से होकर गुजरता है, और जिसका साथ ही आपको यहाँ कोटागिरी आकर जरूर बनना चाहिए और साथ में जरूर एंजॉय करना चाहिए ये अगला ट्रैक, जिसमें भी चाय की ही बात हो रही है।

0: जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माई यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी, और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी, और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन।

तस्वीर है प्रोग्राम का नाम जिसे आप सुन रहे हैं AIR दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मेरे यानी नाज के साथ। दिल्ली से तमिलनाडु, तमिलनाडु से नीलगिरी और फिर वहां से आप मेरे साथ सीधा आ पहुंचे हैं खूबसूरत कोटागिरी, जो कभी मद्रास प्रेसिडेंसी के ग्रीष्मकालीन रिसॉर्ट्स में से एक हुआ करता था, जिसकी खोज के लिए एक बड़ा वाला थैंक यू बनता है मद्रास सरकार के दो फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स का। जी हाँ, साल 1819 के आसपास का समय था वो, जब कुछ क्रिमिनल्स का पीछा करते हुए इत्तेफाकन ये सिविल सर्वेंट्स यहाँ पहुंचे और उन्होंने महसूस किया कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और कुछ कुछ यहाँ का मौसम जो है वो यूरोप के जैसा है, और बस यहीं से बदल गई कोटागिरी की किस्मत और डेवलपमेंट के जरिए ये जगह बन गई और भी खूबसूरत।

सिकरी पहाड़ियाँ बेसिकली कोटा जनजातियों का घर रही हैं, और कोटा गिरी जिसका मतलब भी है कोटाओं के पहाड़। बीते वक्त में इस जगह को कोटा कैरी या कोटा घेरी के नामों से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है कोटाओं की गली। मोटा मोटी बात करें तो नीलगिरी की कई छोटी पहाड़ियों और घाटियों के बीच इस शहर का विकास हुआ है, और आज साउथ इंडिया में ऊटी और कोडाई कनाल के बाद कोटागिरी तीसरी सबसे ठंडी जलवायु वाली जगह मानी जाती है। ट्रैकिंग से लेकर रॉक क्लाइंबिंग तक अपने सारे एडवेंचरस शौक आप यहां पूरे कर सकते हैं। धुंध और कोहरे से ढकी पहाड़ियों और घाटियों के खूबसूरत व्यूज आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसके लिए एक दो या तीन नहीं बल्कि कई सारे डेस्टिनेशंस आपके लिए यहां यानी कोटागिरी में मौजूद हैं। सब पर करेंगे बात, लेकिन इस अगले ट्रैक पर थिरकने के बाद।

हाँ तो जैसा था आपसे वादा, मैं यानी नाज आ गई हूँ वापस कोटागिरी के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की लिस्ट के साथ, जिसमें एकदम टॉप पर है कोडानाड व्यू पॉइंट, क्योंकि ये वाकई एकदम टॉप पर है। लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये जगह कई और पॉइंट्स को खुद में समेटे हुए है, जिनमें रंगा स्वामी शिखर और रंगा स्वामी स्तंभ शामिल है, और जिसे इरूला जनजाति की पवित्र पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट भी है, जो यहाँ की घाटी के दूसरी तरफ नजर आता है और बिल्कुल सामने की पहाड़ी पर ही बहता नजर आता है कैथरीन फॉल्स, जिसकी ऊंचाई कुछ 76 मीटर के आसपास है। नीलगिरी में कोला कंबाई फॉल्स के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा झरना है, और जिसका नाम कोटागिरी में कॉफी के बागानों की शुरुआत करने वाले एमडी कॉकबर्न की पत्नी कैथरीन कॉकबर्न के नाम पर रखा गया था। इसके बाद आपको जाना चाहिए कहाँ, मैं बताती हूँ आपको, एल्क फॉल्स। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, शहर के सेंटर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, और जिसे लोकल लैंग्वेज में उइलाटी फॉल्स भी कहा जाता है। और इस सब के बाद रंग बिरंगे पंछियों को देखने की है अगर आप में ललक, तो आपको जरूर जाना चाहिए यहां मौजूद लॉन्गवुड शोला वन। कोटागिरी बस स्टैंड से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, और इसे इग्नोर करना हरगिज आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। काई से ढके तनों वाले सालों पुराने पेड़ों और घनी झाड़ियों के बीच घूमते फिरते आपको दर्शन होंगे पक्षियों की करीब 80 प्रजातियों के, जो दिखते भले ही अलग अलग हों, लेकिन एक ही सुर में गुनगुनाते हैं।

सादर प्रणाम के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। तस्वीर में जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, कोटागिरी, उच्च कोटि की प्रस्तुति और रोचक जानकारियां मिल रही हैं सदाबहार गीतों के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। दिल से बधाई और आपका दिन और जीवन बहुत मंगलमय हो, लिखा है सुदर्शन मुखी जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ईमेल के लिए और इस तारीफ के लिए भी। तो चलिए वापस चलते हैं कोटागिरी, जहां की फिजाओं के साथ साथ यहां के खाने में भी आपको नीलगिरी की पहाड़ियों की ताजगी और यहां बसने वाले जनजातीय समुदायों की विरासत महसूस होगी। ऊटी के मुकाबले यहां का खाना थोड़ा होम स्टाइल फील करेंगे आप, लेकिन यही स्वाद तो कभी भूल नहीं पाएंगे जनाब। ऑथेंटिक साउथ इंडियन टेस्ट से लेकर नीलगिरी के लोकल स्वाद तक सब कुछ आपको यहां चखने को मिलेगा, जिनमें सबसे पहले लेनी चाहिए यहां की एकदम फ्रेश और खुशबू से भरपूर गर्मा गर्म चाय और चॉकलेट कॉफी की चुस्की। साथ में स्नैक्स के तौर पर भेलपूरी और ताजा मसाला कॉर्न भी आप ले सकते हैं। वर्की नाम से एक खास स्नैक यहां पर मिलता है, जो कुछ कुछ बिस्किट जैसा होता है, लेकिन इसमें पेस्ट्री की तरह कई परतें होती हैं। सड़कों के किनारे आपको हर जगह ये स्नैक्स मिल जाएंगे और छोटी छोटी स्टॉल्स आपको दही वड़ा, भज्जी और बेहतरीन मसाला चाय भी परोसेंगी। और फिर इसके बाद जब बारी आए मेन कोर्स की, तो जरूर चखिएगा यहाँ की सिग्नेचर डिश, जिसका नाम है नीलगिरी चिकन करी। खास एक्सपीरियंस के लिए यहाँ के बडुगा समुदाय की कुछ डिशेस भी आप टेस्ट कर सकते हैं, जिनमें आपको मिलेगी उबली हुई बीन्स की करी, हथु और उदुथु के नाम से, फिर कदी मिट्टू, जो बेसिकली स्टीम्ड आटे के गोले हैं जो मटन या बीन्स करी के साथ परोसे जाते हैं। फिर मीठे की बारी आएगी तो आप

आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, यहाँ का यहाँ की एनिट टू। जी हाँ, खास मौकों पर ये बनती है और उन मौकों को और भी खास बना देती है। और तस्वीर में मेरे यानी नाज के साथ कितना खास रहा आपके लिए ये सफर, जरूर बताइएगा fmgoldair@gmail.com पर ईमेल या फिर व्हाट्सएप के जरिए 9868867 पर। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन FM गोल्ड पर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट का सिलसिला रहेगा जारी। मैं चलती हूं करने आपसे फिर मिलने की तैयारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंता बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया

0: 당근.
1: FM गोल्ड 100.1 MHz पर मैं अमित कमल आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं घर आंगन कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम को आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम को आप आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सामने खड़ी विपत्ति से डरे नहीं बल्कि उसका सामना करें।

ये गीत आपने सुना इजाजत फिल्म से आशा जी की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 90 साल पूरे होने पर आकाशवाणी के बारे में इतिहास की बात कर रहे हैं और इसी में 90 वर्षों का हम सफर आकाशवाणी के आजादी के ऐतिहासिक प्रसारण की अब हम बात कर लेते हैं। आजादी की पहली सुबह और वंदे मातरम की गूंज, 15 अगस्त 1947 की वो सुबह 6:30 पर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी से वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण प्रस्तुत किया। ये गायन सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष अनुरोध पर बंगिया काफी राग में पिरोकर प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रगीत के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करने के लिए पंडित जी ने रेडियो स्टूडियो में खड़े होकर ये प्रस्तुति दी थी। ये गायन केवल संगीत नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक बन गया। 24 जनवरी सन 1950 को वंदे मातरम को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी दिया गया।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

दोस्तों घर आंगन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अमित कमल। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डेज ऑफ द डे की, इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। जी हां, हम जिस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं उसका 98% पौधों से आता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका 80% पौधों से प्राप्त होता है, लेकिन हर साल कीटों और बीमारियों के कारण हमारी लगभग 40% फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और पोषण उपलब्ध कराने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है। इसी समस्या को दूर करने और जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 12 मई को मनाया जाता है। दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक वैश्विक दिवस है जो पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व को उजागर करता है, क्योंकि ये भूख को कम करने, गरीबी मिटाने, पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस का इस साल का थीम खाद्य सुरक्षा के लिए पादप और जैव सुरक्षा है, यानी प्लांट बायो सिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी है। ये विषय पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाकर वैश्विक खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर देता है।

हिमालय की गोद में फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम आपके हित की बात लेकर आते हैं और ऐसी ही एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के साथ काम करना चाहते हैं या भारत के बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। हाल ही में DRDO ने दिल्ली और हल्द्वानी के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस इंटर्नशिप में अनुभव के साथ आपको हर महीने पैसे भी मिलेंगे। जो विद्यार्थी BE, BTech और ME, MTech के फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं वो इसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं। DRDO की इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की अवधि 6 महीने तक की है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2026 से हो सकती है। चयनित उम्मीदवारों को 30,000 रूपए दिया जाएगा। शुरुआत के 3 महीने पूरे होने पर 15,000 रूपए और बाद के 3 महीने पूरे होने पर 15,000 रूपए दिए जाएंगे। दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 15 दिन इंटर्नशिप में एक्टिव रहना जरूरी होगा और 6 महीने की इंटर्नशिप पूरी कर लेने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। DRDO इंटर्नशिप के तहत आप www.drdo.gov.in/DRDO/EN/offerings/vacancy पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सारा प्रोसेस ऑफलाइन होगा।

आशा जी की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म सावन की घटा से। दोस्तों, बहुत से छात्र घंटों पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें कम पढ़ना हो और करियर भी सेट हो जाए। आज के समय में ऐसे कई डिप्लोमा कोर्स हैं जिन्हें करके अच्छी सैलरी पाई जा सकती है, और ऐसे ही कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। ये कोर्स 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बीच पूरे हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसे कोर्सेज की तलाश कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करियर की डिमांड में है। इस कोर्स में SEO, सोशल मीडिया और एड्स जैसी स्किल्स सिखाई जाती है। इस कोर्स को करने के बाद नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग के मौके भी मिलते हैं, और साथ ही आप ब्लॉगर्स के बूम के कारण वीडियो एडिटिंग स्किल्स में काफी अच्छी कमाई के अवसर मिल जाते हैं। अगर आपको क्रिएटिविटी काम करना पसंद है तो आप वीडियो एडिटिंग कोर्स कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर में दिलचस्पी है और बीटेक आदि नहीं करना चाहते तो आप वेब डेवलपमेंट में HTML और CSS जावास्क्रिप्ट जैसे कोर्स कर सकते हैं। इन्हें सीखकर आप वेबसाइट बना सकेंगे और इसमें भी आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का कोर्स करके आप इवेंट

कॉर्पोरेट शूट कर सकते हैं। इसके अलावा वेडिंग फोटोग्राफी तो है ही, इसके जरिए आप अपना चैनल भी बना सकते हैं और मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। ये सीखकर खुद आप अपना काम शुरू कर सकती हैं और इससे अच्छी कमाई भी होती है। होटल मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म कोर्स भी आजकल चलन में है, जिसमें आप होटल मैनेजमेंट से जुड़े किसी स्किल्स जैसे कुकिंग, सर्विस डेस्क, फ्रंट ऑफिस यानी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना सम्राट फिल्म से। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम एक ना एक सफलता की कहानी आपके साथ साझा जरूर करते हैं और आज ही एक कहानी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव से निकली संजू मिश्रा की कहानी इस बात का उदाहरण है कि सीमित संसाधनों में भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। सिर्फ 10,000 की छोटी सी पूंजी से शुरू किया गया उनका अचार का काम आज सालाना 10 से 15 लाख रुपए के टर्नओवर में बदल चुका है। संजू मिश्रा ने बीएड कर रखी है। उनका सपना था शिक्षक बनना, लेकिन कुछ कारणों से उनका सपना अधूरा रह गया और वो शिक्षक नहीं बन पाए। वे इस समय प्राइवेट इंस्टीट्यूट में शिक्षक हैं, बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवाती हैं। संजू मिश्रा कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ अचार का बिजनेस कर रही हैं। संजू मिश्रा शिक्षक न बन पाने के बाद काफी निराश हो गई थी। उसी समय इनके भाई ने इन्हें मोटिवेट किया और उन्हें बताया कि उनके अंदर एक हुनर है, वो है अचार बनाने का। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो अचार बहुत अच्छा बनाती हैं। इनके भाई ने ही अचार के बिजनेस का आइडिया संजू को दिया। संजू ने मात्र 10,000 से अचार के बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत में संजू मिश्रा ने घर पर ही आम, नींबू और मिर्च का अचार बनाना शुरू किया और वो अपने बनाए अचार को आसपास के गांव और मोहल्लों में बेचा करती थी। उनके अचार का स्वाद इतना अच्छा होता था कि लोगों को काफी पसंद आने लगा। धीरे धीरे उनके अचार की मांग बढ़ने लगी और ज्यादा लोग उनसे अचार खरीदने लगे। संजू मिश्रा के अचार की डिमांड बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। उन्होंने अचार की मात्रा बढ़ाई और अलग अलग तरीके के अचार बनाना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ आम और नींबू ही नहीं बल्कि लहसुन, कटहल और मिक्स अचार भी बनाने लगे हैं। इस समय उनके पास लगभग 18 प्रकार के अचार उपलब्ध हैं। ये सफलता की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता अगर उसे पूरी लगन के साथ किया जाए। और जब आप इस तरीके के काम करेंगे और सफल होंगे तो आपके लिए भी लोग ये गीत गाएंगे।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म से। कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम एक छोटी मोटी सी जानकारी आपके साथ हमेशा साझा करते रहते हैं। ऐसी ही एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं दोस्तों। शेफ की टोपी को टोक ब्लैंच कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सफेद टोपी। इसका डिजाइन 16वीं सदी में फ्रेंच किचन से आया था। इसमें 100 प्लेट्स यानी सिलवटें होती हैं, जो उस शेफ के 100 तरीकों के व्यंजन पकाने की कला का प्रतीक मानी जाती हैं। शेफ सिर्फ टोपी को फैशन के लिए नहीं पहनते, बल्कि शेफ की कैप हाइजीन और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। अगर रसोई कोई साम्राज्य है तो शेफ ही उसका राजा होता है और उसके सिर पर टोपी उसका ताज होती है। शेफ की सफेद यूनिफॉर्म में उनकी ऊंची टोपी सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। शेफ के लिए उनकी टोपी भी राजा के लिए उनके ताज जितनी ही कीमती होती है। लेकिन दोस्तों, टोपी के ऊंची होने के पीछे की वजह से लोग अनजान हैं। आखिर शेफ की कैप ऊंची क्यों होती है, ये सवाल कभी न कभी आपके दिमाग में भी आया होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है कि खाने में बाल न गिरे, इसलिए शेफ ऊंची टोपी पहनते हैं। और यही वजह है कि प्रोफेशनल किचन में शेफ्स को सिर ढककर ही काम करने की इजाजत होती है। इसके अलावा जैसे आर्मी अफसर अपनी यूनिफॉर्म से पहचाने जाते हैं, वैसे ही शेफ की पहचान

उनकी व्हाइट यूनिफॉर्म और टोपी से होती है। टोपी की ऊंचाई शेफ की पोजीशन और एक्सपीरियंस को बताती है। इसे लेकर एक कहानी भी प्रचलित है दोस्तों, जिसके मुताबिक 16वीं सदी में इंग्लैंड के राजाओं में से एक राजा हेनरी ने भोजन में बाल पाए जाने पर एक रसोई का सिर कटवा दिया था। इस घटना के बाद सभी रसोइयों को खाना बनाते समय टोपी पहनने का आदेश दिया गया था और इससे उनके बाल पके हुए भोजन से दूर रहते थे और रसोई में स्वच्छता और साफ सफाई बनी रहती थी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आपके लिए।

वक्त फिल्म से ये गीत आपने सुना आशा जी की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं और बच्चों की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आजकल माता पिता को ज्यादातर यही शिकायत रहती है कि उनका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता या फिर किताबों को देखकर ही वो दूर दूर भागने लगता है। इस वजह से कई बार पेरेंट्स बच्चों पर काफी गुस्सा होने लगते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं। बता दें, आपकी आदत बच्चे को पढ़ाई से तो दूर करेगी ही और साथ ही आपसे डर की वजह भी बनेगी। लेकिन इससे और इसके लिए हम आपके साथ कुछ बातें साझा कर रहे हैं जिससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा और वो फोकस भी कर पाएगा। अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि घर में जिस तरह का माहौल होता है वही बच्चों के व्यवहार में देखने को मिलता है। दरअसल बच्चे हमेशा अपने माता पिता और घर के बाकी बड़ों से देखकर ही सीख लेते हैं। बच्चों में पढ़ाई के प्रति ललक जगानी हो तो इसके लिए आपको खुद भी उनके साथ बैठकर पढ़ना होगा। इसके लिए आप उनके सामने किताबें पढ़ने बैठ सकते हैं, उनमें से उन्हें कुछ कहानी पढ़ा सकते हैं, सुना सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे बच्चों में किताबों के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाते वक्त पूरा उदाहरण देकर समझाइए। इसके लिए आप छोटे छोटे किस्से कहानियों की मदद ले सकते हैं। एक और काम आप कर सकते हैं कि बचपन से ही बच्चों को लाइब्रेरी विजिट करवाते रहें। जहां पढ़ाई का माहौल हो तो आगे चलकर भी उनमें किताबों के प्रति ललक बनी रहेगी और लाइब्रेरी से बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती। और बच्चों को अलग अलग जगहों की लाइब्रेरी घुमाने लेकर जाएं या फिर उन्हें बुक स्टोर्स पर ले जाकर बुक्स दिखा सकते हैं और अलग अलग किताबों को लेकर उनसे चर्चा कर सकते हैं। बच्चे छोटी छोटी बातों से ही खुश हो जाते हैं। जब भी आपका बच्चा पढ़ाई करने बैठे तो उसे शाबाशी जरूर दें, उसमें रीडिंग अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें और साथ ही इससे बच्चे में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी और वह आगे और भी अच्छा करने की कोशिश करेगा और कहीं दूर तक जा सकता है। आपका बच्चा कुछ मुकाम हासिल कर सकता है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना दूसरा आदमी फिल्म से। दोस्तों, सारी चीजों की बातें हमने कर ली घर आंगन कार्यक्रम में, और अगर खाने पीने की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा और हल्का रखने के लिए लोग तरह तरह की चीजें खाते हैं। ऐसे में सत्तू एक सुपर फूड की तरह काम करता है। ये न सिर्फ ठंडक देता है बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है। सत्तू से बनी चटनी स्वाद में जबरदस्त होती है और इसे रोटी, परांठा या चावल के साथ आसानी से खाया जा सकता है। अगर आप भी कुछ हेल्दी और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो सत्तू की चटनी जरूर बनाएं। तो चलिए जानते हैं इसकी आसान सी रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक कटोरी में 3 या 4 चम्मच सत्तू लें। इसमें बारीक कटा प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डालें। अब इसमें नमक, नींबू का रस और गर्म करके सरसों का तेल डालें। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करें। ध्यान रखें कि चटनी ज्यादा पतली ना हो, हल्की गाढ़ी रखें। आखिर में ऊपर से हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें और आपकी स्वादिष्ट और ठंडी ठंडी सत्तू की चटनी तैयार है। आप भी खाएं और अपने अपनों को भी खिलाएं।

ये गीत आप सुन रहे हैं आए दिन बहार की फिल्म से और आवाज है लता मंगेशकर की। इसी गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं अगली मुलाकात तक। अपने दोस्त अमित कमल को यहीं पर दीजिए इजाजत और सुनते रहिए FM गोल्ड।

0: के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रूपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 1:10:58 और इस वक्त कलाकार बेमिसाल में लेखक, गीतकार, नाटककार, पार्श्व गायक और अभिनेता स्वानंद किरकिरे, हिंदी सिनेमा के साथ ही दूरदर्शन सीरियल्स के कहानीकार, सहायक निदेशक और संवाद लेखक स्वानंद किरकिरे, फिल्म जगत की अनेक विधाओं में संपूर्ण स्वानंद किरकिरे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्वानंद किरकिरे से जुड़ी और उनकी लेखनी से जुड़ी उनके फिल्मी करियर की बातें साझा होंगी आज कलाकार बेमिसाल के इस सफर पर। और सबसे पहले उनकी कलम से निकली एक छोटी सी रचना, आप सबके नाम कवि कौन है, भगवान कवि को बनाता है या कवि भगवान बनाते हैं, कवि रक्त को ऊर्जावान बनाते हैं, कवि समुदायों को देश बनाते हैं, कवि देशों को महान बनाते हैं, कविता सुन जवान सीमाओं पर लड़ते हैं, कवि कुर्बानियों के महाकाव्य गढ़ते हैं, गीता बाइबल कुरान लिख जाते हैं, कवि अपनी समझ से इंसान बनाते हैं, कवि मोहब्बत की जुबान बन पाते हैं, कवि कामना का पैगाम बन जाते हैं, कवि गीतों के प्राण बन जाते हैं, भावनाओं को चार चांद लगाते हैं, कवि भाषा को सम्मान दिलाते हैं, कवि निर्बल के अस्त्र बन जाते हैं, कवि क्रांति के शस्त्र बनाते हैं, कवि साबुन तेलों की दुकान चलाते हैं, भगवान कवि को बनाता है या कवि भगवान बनाते हैं। जी हाँ, इसी तरह की और भी रचनाएं बीच बीच में आपके नाम होती रहेंगी। स्वानंद किरकिरे जी की कलम से निकली और उनकी जो लेखनी का जादू है ना, वो भी हम सब के सिर चढ़कर बोलेगा आज इस सफर पर। तो फिर कलाकार बेमिसाल का ये सफर, और सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा सा गीत परिणता फिल्म से, उन्हीं की कलम का जादू यहां पर भी दिखेगा। और क्या करना है आपको, सुनते रहना है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1। अंजलि है आपके साथ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। परिणीता फिल्म का ये गीत बहुत ही मधुर सा गीत है, शांतनु मोइत्रा का संगीत है और गीतकार स्वानंद किरकिरे।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

जाने माने गीतकार, गायक, लेखक स्वानंद किरकिरे, जिनका इस वक्त जिक्र हो रहा है, कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आप जॉइन इन हैं, जिनकी लेखनी के जादू ने सुनने वालों को हमेशा सराबोर किया। उनकी गायकी, उनका लेखन सभी कुछ लाजवाब रहा। स्वानंद किरकिरे, जन्म इनका हुआ इंदौर में एक मराठी भाषी परिवार में, माता नीलांबरी और पिता चिंतामणि। माता पिता दोनों ही संगीत में पारंगत रहे, दोनों ही शास्त्रीय संगीत के अच्छे ज्ञाता रहे। बस माता पिता से ही इन्होंने संगीत की जितनी भी शिक्षा ली थी उन्होंने अपने माता पिता से ही ली थी। गायन का कोई भी औपचारिक प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त नहीं किया था और शिक्षा में ग्रेजुएशन होने के बाद वाणिज्य से इन्होंने स्नातक रहिए और उसके बाद दिल्ली चले आए। 1996 में इन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक किया और थिएटर करना शुरू कर दिया। और जब इनकी लेखनी का जादू, मतलब जब इनके शब्द कविता के रूप में आए और वो किताबों में छपने लगे, तो उन्होंने अपने बचपन को कुछ यूं बयां किया। रे मीता,

एक काल्पनिक सा नाम लिया। रे मिता चल भागे चल दौड़े, एक गली न छोड़े, कच्ची अमिया तोड़े, चाहे रोके लोग निगोड़े, रे मिता गम की बहा मरोड़े, रे मिता चल भागे चल दौड़े। रे मिता मैं बंदर तू भालू, शलजम कचालो, चल घुटने लहू सना ले, चल गिर गिर जख्म लगा ले। रे मिता बचपन फुंसी फोड़े, रे मिता गम की बहा मरोड़े, रे मिता चल भागे चल दौड़े। रे मिता कटी पतंगे लूटे, जामुन काले कलूटे, सुन मंदिर घंटी बाजी, चल मिसरी बांटे आजी। रे मिता तब तड़ घोड़े, रे मिता गम की बहा मरोड़े, रे मिता चल भागे चल दौड़े। रे मिता मुनिया लुगाई, खोसट की तेरहवीं आई, रे मिता दोनों तरफ मिठाई, हमें हमने भी गजब पचाई, सब चुटकुले हसौड़े, रे मिता गम की बहा मरोड़े, रे मिता चल भागे चल दौड़े। रे मिता चांद है छत पे उतरा, दूर रो रहा कुर्ता, खर्राटे सरगम गाए, क्यों नींद हमें ना आए, रे मिता ठंडी चादर छत पे, रे मिता सपनों वाले रथ पे, अंबर से चांदी तोड़े, रे मिता गम की बहा मरोड़े, रे मिता चल भागे चल दौड़े। और एक गीत बहुत ही दिल को छूता हुआ, थ्री इडियट फिल्म से शांतनु मोइत्रा की आवाज में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त कलाकार बेमिसाल का ये लाजवाब सा सफर हम यहां पर तय कर रहे हैं और जिक्र हो रहा है स्वानंद किरकिरे, एक बहुआयामी प्रतिभा की धनी शख्सियत जिनके उत्कृष्ट कामों के लिए उन्हें कई बार सम्मानों से नवाजा गया। स्वानंद किरकिरे को 2 बार सर्वश्रेष्ठ लेखक के रूप में उनकी लेखनी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार 2007 में फिल्म लगी रह मुन्नाबाई में उनके लिखे गीत बंदे में था दम वंदे मातरम के लिए और दूसरी बार 3 इडियट्स फिल्म के गीत बहती हवा सा था वो जो आपने अभी सुना इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। परिंदा फिल्म के गाने के लिए भी पीयू बोले जो हमारे कार्यक्रम का सबसे पहला गीत था परिणीता फिल्म से, तो ये जो गीत आपने सुना था पीयू बोले इसके लिए भी उन्हें नामांकन मिल चुका है। और असली बात तो वो बताते हैं कि असली सम्मान उनके लिए क्या है, उनके चाहने वाले दर्शकों श्रोताओं और फैंस का दिल है जिसके दिल में जिन सबके दिल में स्वानंद किरकिरे बसते हैं और उनकी लेखनी का जादू हम सब के सिर चढ़कर बोलता है। सचमुच जब उन्हें सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं किस तरह से वो लिखते हैं। और लिखने के लिए भी उन्होंने बताया कि कोई खास पैरामीटर नहीं होता, बस जब कहते हैं सिचुएशंस के अनुसार और जो आपके आसपास समाज के अनुसार ताना बाना जो समाज का होता है वो आप पर जो असर डालता है और आप देखते रहें सुनते रहें और कभी ना कभी वो चीजें आपके लेखनी में काम आती हैं। मतलब जरूरी नहीं कि प्रेजेंटली जो कुछ हालात है वही उनकी लेखनी में झलके, बहुत कुछ उनके लेखनी में ऐसा झलका जो बचपन से उन्होंने देखा या बाद के दौर में देखा। तो जब वो उनसे पूछते हैं कि भाई एक इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि क्या प्रेरणा रहती है या कि किस तरह से मतलब लिखने वाले लोग किन चीजों का ध्यान रखें, तो वो यही कहते थे कि बस हमेशा सुनते रहो और आंखें और दिल दिमाग खोलकर रखो जो कि आपके लिखने में बहुत ही काम आएगा। इसी तरह उन्होंने देखिए क्या खूब लिखा है, गीतों की दुकान है, ख्वाबों का सामान है, कागज का मकान है, स्याही पहचान है, आ जाओ जी ये गीतों की दुकान है। गम हो सुकून देंगे, गम हो सुकून देंगे, मुस्कानों का मोल लेंगे, शब्दों के पंख देंगे, उड़ जाओ जी गीतों की दुकान है, आ जाओ जी। प्यार की बीमारी लगे, दिल बोझ भारी लगे, जीना दुश्वारी लगे, लफ्ज गुलाबी लगे, आजमाओ जी गीतों की दुकान है, आ जाओ जी। और उनकी लेखनी का, उनकी कलम का जो करिश्मा है जिसे इस गीत के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, तो ये गीत अब आप तक पहुंच रहा है लगी रहो मुन्ना भाई फिल्म से सोनू निगम, श्रेया घोषाल और प्रणब बिस्वास की आवाज में है ये गीत बंदे में था दम।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

आकाशवाणी गोल्ड 100.1 और बातें हो रही है इस वक्त जाने माने नाटककार, गीतकार, लेखक, अभिनेता और पार्श्व गायक स्वानंद किरकिरे जी की, जिन्होंने की काफी सारी वेब सीरीज भी की हैं जो दर्शकों को काफी पसंद आई। पंचायत 3 में भी वो सांसद के किरदार में दिखे और उन्हें काफी प्रशंसा मिली। आगे की सीरीज में भी उनका काफी अच्छा रोल रहा। जाने माने एक्टर, सिंगर, राइटर स्वानंद किरकिरे जी ने, जैसे कि हमने अभी बात की कि लगी रहो मुन्ना भाई का ये जो गीत था वंदे

नहीं था दम, इसे लिखा और इसी तरह बहती हवा सा था, पीहू बोले और फिर ले आया जैसे सदा बहार गीत उनकी कलम से निकले। साल 2012 में आमिर खान जी के शो सत्यमेव जयते में उनका जो गीत था ना गाया हुआ ओरी चिरैया काफी हिट रहा और सचमुच देखने वालों की आंखें नम कर जाता है। ये जो गीत था ओरी चिरैया, और कह सकते हैं कि इस गीत को सुनकर बहुत सारे उनके गीत हैं उनकी आवाज में कि लाजवाब सिंगर भी रहे स्वानंद किरकिरे, लेकिन उन्हें एक्टिंग करने में भी बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा पसंद है उन्हें एक्टिंग करना, ऐसा वो खुद अपनी जबान से कहते हैं। और एक और मसान फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है उन्हीं की आवाज में, चलिए सुनते हैं, आनंद लेते हैं। कितना दिल को छू लेने वाला ये गीत है, इसके शब्दों पर जरा गौर फरमाइएगा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और कलाकार बेमिसाल के सफर पर आज बात करें जाने माने नाटककार, गीतकार, लेखक, अभिनेता, पार्श्व गायक स्वानंद किरकिरे साहब की, और जिनके गीत अभी आपने उन्हीं की आवाज में सुना। एक तो ये जो टॉक शो का गीत था उरी चिरैया, जिसने कि पूरे देश का, जैसे जहां जहां इसे सुना गया होगा ना, सबकी आंखें नम हो आई थी इस गीत को सुनकर। इस जैसे बोलते हैं कि दिल को छूने वाले शब्दों का जो एक ताना बाना था, उनकी कलम से रचा गया था, बुना गया था, सजाया गया था। और उससे पहले मसान फिल्म का जो गीत आपने सुना, तो किसी रेल सी, ये उन्हीं की आवाज में था, स्वानंद किरकिरे जी की। और परिणीता फिल्म का गीत भी, हो बोले से जुड़ी एक स्टोरी के बारे में उन्होंने एक बार एक मंच पर साझा किया कि वो बताते हैं कि हजार ख्वाहिशें का गीत, जिसका गीत अभी आपको मैं सुनवाऊंगी, बावरा मन, इस फिल्म का जब गीत उन्होंने जो लिखा था उसे सुनकर प्रदीप सरकार उन्हें विधु विनोद चोपड़ा जी से मिलवाने के लिए ले गए। कुछ बातें हुई और उस वक्त ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि उन्हें विधु जी के लिए कुछ गीत लिखने हैं। इस बीच वो अपने होम टाउन इंदौर चले गए और एक दिन अचानक से उन्हें फोन आया और मिलने के लिए बुलाया गया। स्वानंद जी ने पाया कि कुछ म्यूजिक धुनें उन्हें सुनवाई गई थी जिस पर कि उन्हें गीत लिखना था, और म्यूजिक सुनकर, म्यूजिक की धुनों पर गीत लिखना, यह उनके लिए पहला अनुभव था। इससे पहले बस वो पहले कलम चलाते थे, उसके बाद म्यूजिक कंपोजर उसकी धुनें बनाते थे, लेकिन अब की बार कुछ उल्टा हुआ कि म्यूजिक धुने पहले सुनी गई और उन पर उन्हें गीत लिखना था। तो पहले तो उनका मन नहीं बना और वो चाह रहे थे कि इसके लिए मना कर दें, लेकिन किसी वजह से उन्होंने सोचा कि चलो लिख देता हूं, देखा जाएगा, अगर गीत नहीं पसंद आएगा तो गाना खुद ही रिजेक्ट हो जाएगा। बस यही उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और उनकी कलम

से जो कुछ गढ़ा गया ना वो एक इतिहास बन गया। और ये गीत तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन उनकी जो बोलते हैं ना लेखनी से बहुत सारी ऐसी चीजें निकली हैं। उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं कविता के तौर पर और उस किताब को नाम दिया है आप कमाई। तो एक बार उनसे पूछा गया कि भाई इस काम ये जो नाम है इसके पीछे क्या कारण रहा, तो उन्होंने कहा कि जैसे बाप कमाई होती है ना इसी तरह से ये उन्होंने आप कमाई मतलब कि पहली बार ये उनकी कमाई से लिखा गया या उनकी कमाई के लिए ये

मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 मई महीने की 12 तारीख और दिन है मंगलवार। श्रोताओं, आकाशवाणी के तवंग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्री तंजिन दुर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी सहायक श्री एंटू कुमार दास और मिस शेखा देखा, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी सहायक श्री तानिंग ताको, मोनपा में उद्घोषक श्री तुप्तन ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यशी ओमो। कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे मीटी न्यूज के तहत अंग्रेजी में समाचार। तत्पश्चात दोपहर 2:15 पर आप सुन सकेंगे दोपहर समाचार।

0: यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे।

0: कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप

0: चरणों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेलेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम।

वंदना, कार्यक्रम वंदना में लीजिए। कार्यक्रम वंदना में आइए सुनते हैं तवंग मठ के स्वर्गीय लामा दांगा और साथियों से बोध भक्ति भजन। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

是

Oh, yeah.

इस श्रोता भी आपने सुना तावांग मठ के स्वर्गीय लामा दांगा और साथियों से बोध भक्ति भजन। इन्हीं भजनों के साथ ही

भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अभियान पर समाप्त हुआ। मीडियम के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसके अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं किशोर कुमार के सुर में चंद बांग्ला नगमे। तो आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोता भी पाना ले रहे थे किशोर कुमार के स्वर में चंद बांग्ला नगमे। इन्हीं नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात में आइए सुनते हैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा के छात्रा

0: ये शिवमो द्वारा छात्रों के जीवन में दयान का महत्व विषय पर दी गई वार्ता।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कुमारी ईशी वांगमो, पीएम श्री जेएनवी तवांग में 11वीं मानवी कक्षा में पढ़ती हूं। आज के कार्यक्रम में मेरी वार्ता का विषय है छात्रों के जीवन में दयान का महत्व। आज मैं आप सभी के सामने छात्रों के जीवन में दयान का महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्कूल का जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। परीक्षा, प्रोजेक्ट, दोस्ती और भविष्य की चिंता, यह सब मिलकर छात्रों पर मानसिक और शारीरिक दबाव डालते हैं। दयान से हमारा मन शांत रहता है, इसे चीजें जल्दी याद होती है और पढ़ाई पर अच्छे से मन लगा पाते हैं तथा सोचने की शक्ति बढ़ती है और निर्णय बेहतर होते हैं। मेडिटेशन से रक्षणता बढ़ती है और हम मानसिक परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं। प्रतिदिन दयान करने वाला छात्र असफलता से नहीं डरता और वे दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं। रोज सुबह पढ़ाई के बीच 3 मिनट मेडिटेशन करने से एकाग्रता तथा स्वस्थ बढ़ती है तथा मानसिक ऊर्जा भी बढ़ती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, यदि आप अपने जीवन को सुशीलता और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। शांति बाहर नहीं भीतर होती है, शांति बाहर नहीं भीतर होती है, मेडिटेशन ही इसकी चाबी है। धन्यवाद।
0: श्रोताओं ने अपने सुना पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रा मिस येशी वांगमो द्वारा छात्रों के जीवन में दयान का महत्व विषय पर दिए गए वार्ता। श्रोतों, इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोतों, समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा लीजिए पेश है खिचकी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। इस गीत को लिखा है राजशेखर ने तथा संगीत से सवारा है जैस्लिन रॉयल ने।

जो तभी आपने सुना सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, सावन किरकिरे और प्रणव विश्वास की आवाजों में फम लगा चुनरी में ताक फम से यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे सावन किरकिरे तथा संगीतकार थे शांतनु मोहित्रा। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा ये आनंद लेते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फम से, दर्शन रावल और रोजक कौली की आवाजों में। इस गीत के गीतकार है गुरप्रीत शैनी तथा संगीतकार है रोजक कौली।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12

0: साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:50 हुए हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा ये सुनते हैं मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान की युगल आवाजों में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल मिश्रा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा लीजिए। पेश है टू स्टेट्स फिल्म से अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की युगल आवाजों में। इस गीत के गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

हरदीप कौर और बेनी दयाल की गलावाजों में श्रोता भी आपने आनंद लिया फिल्म बैंग बैंग से यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे अन्विता दत्त तथा संगीतकार थे विशाल शेखर। श्रोता समय आप आनंद ले रहे हैं चंद फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए आइए आनंद लेते हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी दयाल और शेफाली अल्विडस की आवाजों में। इस गीत के गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीतकार है प्रीतम।

श्रोतों कार्यक्रम का अगला नगमा आई हम आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और रूपाली मोक की आवाजों में फम बधाई दोस्ती। शफ रचना वरुण गोवर के है तथा संगीत अमित द्विवेदी का।

अरिजीत सिंह और अजीज कौर की आवाजों में श्रोता भी अपने आनंद लिया केदारनाथ फिल्म से एक गीत। इस गीत के गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीतकार थे अमित द्विवेदी। श्रोता कार्यक्रम का अगला नगमा यह आनंद लेते हैं यशीर देसाई और अल्तमस फिरदी की आवाजों में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, समय संध्या के 4:30 हुए हैं और प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। राग रंग कार्यक्रम में लीजिए पेश है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से राग मधमेत सारंग पर बांसुरी वादन तथा तबला पर साथ दे रहे हैं शफीर खान। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं में आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से राग मधमेत पर मधमेत सारंग पर बांसुरी वादन तथा तबला पर साथ दे रहे थे शफीर खान। श्रोताओं इसी के साथ ही शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त हुआ। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर सुनेगा हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। परीक्षा पत्र लीक के आरोपों के कारण मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सभी नर्सों के प्रति उनके समर्पण, करुणा और मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला स्थित बुद्ध स्टेडियम में स्मार्ट पब्लिक इन्फॉर्मेशन बोर्ड का उद्घाटन। ये बोर्ड SBI बोमडिला द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पहल के तहत प्रायोजित। हिमंत बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जाँच शुरू की। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटन्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने शिक्षा में मेडिकल दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: NTA ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में NTA द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए हैं। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और समर्पण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर वर्ष 12 मई को दुनिया भर में नर्सों और स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सभी नर्सों के प्रति उनके समर्पण, करुणा और मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि अस्पतालों से लेकर दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों तक नर्सों का योगदान अरुणाचल प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के समान है। अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला स्थित बुद्धा स्टेडियम में स्मार्ट पब्लिक इन्फॉर्मेशन बोर्ड का उद्घाटन विधायक फोर दिरांग फुरफा शेरिंग द्वारा सोमवार को किया गया। ये बोर्ड SBI बोमडिला द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पहल के तहत प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सार्वजनिक संदेशों को डिजिटल माध्यम से प्रभावी रूप से प्रसारित करना है, जिससे जन जागरूकता और सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके। कार्यक्रम में विधायक शेतेन चौम्बे, तेंजिंग निमाग्लो, वेस्ट कमिंग उपायुक्त डॉ. दिलीप कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। डॉ. सरमा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली और अजंता नियोक, असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरा शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंत बिस्व सरमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि श्री सरमा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं, वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपनी घरेलू LPG उत्पादन को लगभग 76,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा है कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर बनाने में कामयाब रहा है।
2: LPG किचन में इस्तेमाल होने वाली LPG सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू LPG उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। राज्य पुलिस CBI को केस डायरी सौंपने की तैयारी कर रही है। CBI की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। IPL क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा की

0: दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, साथ ही सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना जताई गई है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 9 जिलों वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहराने की अनुमति दी है, जबकि वह इस खबर से ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडस ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका को पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। और घरेलू शेयर बाजार में संविदा सूचकांक आज लगभग 1.4% की गिरावट में दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपोगापक। International Nurses Day is being celebrated today, marking the birth anniversary of Florence Nightingale Day, founder of modern nursing. The day recognizes the essential role of nurses in patient care, community health and economic development. The theme for International Nurses Day this year is Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Lives. It highlights the need for better support, safety and resources for nursing professionals globally. On the occasion, President Draupadi Murmu conferred the National Florence Nightingale Awards 2026 on 15 nursing professionals at a function held at Rashtrapati Bhavan. In her message, President Murmu stated that this occasion is a fitting tribute to the invaluable contribution of nursing professionals and healthcare professionals who serve the nation with compassion and unwavering dedication. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decisions of the first cabinet meeting under West Bengal's newly elected Chief Minister Subendru Adhikari. In a social media post, the Prime Minister said, "The welfare of people of West Bengal is the top priority." Modi expressed happiness that the people of the state will have access to Ayushman Bharat, the world's largest healthcare scheme that ensures top quality and affordable healthcare. The Prime Minister added that the double engine government will ensure seamless delivery of key central schemes. The state government announced several important decisions after the first cabinet meeting yesterday. Transfer of land to border security force within 45 days for fencing the borders with Bangladesh was among the decisions. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India has increased its domestic LPG production from nearly 36,000 tons per day to 54,000 tons amid West Asia conflict. The minister said this while addressing the annual Business Summit 2026 in New Delhi. The minister said while many nations have faced skyrocketing prices and fuel shortages over the last few months, India has managed to keep domestic prices relatively stable. He said, country maintains a buffer stock of 60 days for crude oil and LNG and 45 days for LPG, ensuring there is no immediate threat.

那趟投靠谢鹏，那一波儿，结合事情里头认真，估计修了新交换，谁搞了那趟啊？结合那个事情，联合项目不能单独去投靠，刚开始个木农人结合个密切帮人，不能单独个种果树，背起统筹个农不认识哪里？确定投靠人呐，所属结合国实行联合项目，实际办能不就通道人呢？确定个也，没那多基本能不认识哪里？也是今年个头儿，阿布达比，个几个南部地个迪士尼林，南部科学大学，南部三大个建设呀，南部变院校个灭班给建安这做呢做呢？我内军热速修起，南州科育参照业务人，全都米科长及内人开立，马子弟送脚边向他不内做呢？结合农村理工生内做哪趟啊？农合社区，我的古吉拉、马哈拉斯塔、拉吉斯坦、小卡，农村州、路、年内、说州、沃马、尼尼斯，年的头哪里？我的阿桑宁、梅加拉雅。अरुणाचल प्रदेश निंग नु बेंगल शोका ये नगर नमचर छोमक निन्यक्स नानी आईपीएल क्रिकेट चमे डेंदुर देश गुजरात टाइटन्स सी सनराइजर्स हैदराबाद देवका देश नु छुजेनिस ने फेशा दर गुजुया टोंकेर अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी चमे थंगा शेन्यु किंबुर संजना उ देवका देशिक ने छु जे थेन शो शुसु बना दुस संजना दा उजुक छु जे दुनटेक लेरिम तापोक समची गुजुदुर देश उस लिरिमा न था लेकी वामु सी कृष्णरू तापक्षम सन्नासा

hindi ka shidhan ka shi sanna sa lirin pradeshik sangi nagur kunzi chuk tisi sumche eje asamis ka khsama ka shi samyato yimbar nagur kunzi chuk tisi sumni karma kheli chi chi lirin meripa sanna sa eje PM shiri GNV labdra ka tawang labdra brumin chambi wamo klas chire ka lepkhan si राष्ट्रीय निर्माण में एनसीसी का भूमिका निवकोर तमसे समेत इंबर नगर कुंजी चुकते से सुनने कर्म के लिए चिकित्सम से लिरिम नारी संगीत नासा इचे न था फिल्म ऊंचाई का नकाश आजित सिंह रोसम से नासा इशू जे फिल्म सुल्तान का राहत फते अली खान सिंह रोसम से नासा इशू जे फिल्म सत्यम एव जयते का जरा खान निंग जस माना नेसिंग युरो समसा नासा नगर कौनसी चुकते सुमन कर्म कहने चीचे लेरिम गीत मंजरी सा नासा ऐसे न था फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो का विशाल मश्रा निंग हंसिका पारी सचिन जिगर पासिंग युरो समसा नासा इशुचे फिल्म दोपाती का परंपरा तंदन सिंह समसना सा इशुचे फिल्म अमर प्रेम की प्रेम कहानी अरिजीत सिंह सिंह समसना सा इशुचे फिल्म स्त्री का वरुण जैन निशिल्पा रो सचिन जिगर बासिंह समसना सा इशुचे फिल्म शुरमा का दिलजीत दुसंज सिंह समसना सा इशुचे फिल्म क्या यही प्यार है का अलका याग्निक निंग बाबुल सिप्रो नेसिंह समसा नासा इशुचे फिल्म सैयारा का विशाल मिश्रा निंग हंसिका पारिक नेसिंह समसा नासा इशुचे फिल्म धरक दो का दर्शन रावल निंग जुनिता गांधी रोजा कोहली पासिंह समसा नासा इशुचे फिल्म वार टू का अरिजीत सिंह निंग निकिता गांधी नेसिंग समसा नासा इशुताचे फिल्म बागी फोर का जोश ब्रार निंग परंपरा तंदन नेसिंग समसा नासा नोनो चिजब्लिनिंग कर्म खेले चीचे लिरिम राक रंग चिजब्लिनिंग कर्म खेले लिंगे चे आकाशवाणी इटानर के रिले ये शुसु नाना हिंदी के सेजु निंग शुक इंजी के सेजु सिजिब दिनिंग कर्म के ने चिले जैसा नासा नमिंग अतो नौनब से लेंग छे नमदा लेरिम छे कोजु यंबुर इजे तोहं गंपक लोपन सुर्पा लम किसन नर्बुसे शुसु किलों माप्यमक नमदर गुरिम नी पिचिच मुथु यसमे तो यंबुर नौनब से लेंग कर्म के लिए छे कियों नेसु जे थेंशे बनांग मनपुका शुसु सनासा नौनब से लेने कर्म के लिए चले चे तुंडे के लिए ना चे कलप समय तो यंबर लिए से रा नौनब से ग्रो चे से ग्रोने कर्म चीचे लिए चरो का नौनब से ग्रोने कर्म के लिए शेदन लिए चे कोजो यंबर एजे ग्यांगर युग अम दर्जी युटन से क्रिस्टो नो चुनचक सुंबा ड्रामा संबल लुडुब मा बार्चे लमसल केवे शेप्तन चेनरेस तो एपनिंग यिग्या मुआ मलम सना सा नौनब से निश्चे आकाशवाणी दिल्ली के लिए शुसु नाना हिंदी के सहयोग निंग शुक इंजी के सहयोग से निश्चित कम लेंगे चेसा नासा नौनब से निश्चित कर्म चीचे लेरिम हल्लो आकाशवाणी लंजे इतना बासी फोन जो ये थूते नाउ सम खासे समय तो इंबर नौनब से निश्चित कर्म करने लेंगे चे लेरिम प्रदेशिक समाचार रीजनल न्यूज नौनब से निश्चित कर्म करने चीचे शुजु निश्चित कर्म कहने चले छे लिम कोमे तरह ने सना सा नौनब से जीत छे लंजे इतना बासी वसप प्रजे जुए तुदे नाउ सम खजे सना सा नौनब से जीतिन कर्म कहले जी छे आकाशवाणी दिल्ली के लिए शुसु चम जंदु से जुर समाचार संध्या नौनब से जीतिन कर्म कहने लेंगे छे सिदुगु छे न्यूज एट नाइन आकाशवाणी दिल्ली के लिए शुसु इंजी के सजु समय तो यंबर नौनब से दुगुनी कर्म चिलें छे नाथ नब्दिक लिरिमा जो जिन बना हिंदी के सना सा से दुगुनी कर्म चिरो छे लुंग ठिंग का तावांग नगोक लिरिम बना चचन तो यंबर लानी ना से दादा लिरिम से रका नहा देश निंग शुचे नगोक लुंग ठिंग का तावांग लिरिम निंग शुचे कुर शुचे

मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए श्रोता प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आज के शेष कार्यक्रमों में अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक शेदन लिरिम में सांगप्रोंग गांव के आमा नुरबुल हमो और साथियों से गुंजक सुम्पा कैप्टो डोलमा ग्यावे शब्दन सांगचे मोनलम और गोवा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:05 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम आज की कविता। इसमें आप सुन सकेंगे इंग्लिश इलाइट इंग्लिश स्कूल तवांग के 7वीं कक्षा के छात्र बुम्पा दुर्जी से एक कविता। आज शाम 7:11 पर सुनेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसके अंतर्गत आवाज ले सकेंगे फिल्म जब प्यार किसी से होता है से चंदक में। आज शाम 7:25 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा शाम 7:50 पर सुनेगा रीजनल न्यूज। आज शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत फिल्म बूस्टी प्राइड ऑफ इंडिया से अरिजीत सिंह की आवाज में। आज रात्रि 8 बजे आप आनंद ले सकेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। आज रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। आज रात्रि 9:15 पर कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोताओं अब हम आपको कल यानी 13 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से रूबरू करवाते हैं। रोजाना की तरह हमारा कल का सभा आरंभ होंगे।

कल दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचार के तहत। कल दोपहर 2:15 पर सुनिएगा दोपहर समाचार के अंतर्गत हिंदी में समाचार। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत आप सुन सकेंगे शिव महिमा के तहत चंद हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3 बजे आप आनंद ले सकेंगे मायूक हजारिका की आवाज में चंद असमिया फिल्मी नगमे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात में आप सुन सकेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा के मिस जम्बे वंगमू से राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका विषय पर दी गई वार्ता। कल दोपहर 3:33 पर सुनेगा महिला पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे ऊंचाई फिल्म से नखशीश अजीज के आवाज में, सुल्तान फिल्म से राहत फतेह खान की आवाज में, एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिसोजा और सुजैन डीमेलो की आवाजों में, और सत्यमेव जयते 2 फिल्म से जारा एस खान और जयेश मनक की आवाजों में चंद नगमे। कल दोपहर 3:50 पर आप आना ले सकेंगे कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत विकी विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म से विशाल मिश्रा, हंसिका पारिक और सचिन जिगर की आवाजों में, 2 पति फिल्म से परंपरा टंडन की आवाज में, अमर प्रेम की प्रेम कहानी फिल्म से अरिजीत सिंह के स्वर में, स्त्री 2 फिल्म से वरुण जैन शिल्पा राव और सचिन जिगर के सुरों में, सुरमा फिल्म से दिलजीत दुष्यंत की आवाज में, क्या यही प्यार है फिल्म से अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में, साई राणा फिल्म से विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की आवाजों में, दर्कन 2 फिल्म से दर्शन रावल जोनिका गांधी और रोजक कौली के सुरों में, वार 2 फिल्म से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में, और बागी 4 फिल्म से जोश बरार और परंपरा टंडन की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। कल संध्या 4:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित 4:45 पर आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे रोजाना की तरह मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत लेरिम नामधर। 5:30 पर सुनेगा दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम नंगशी क्लब। 6 बजे लेरिम सेरा 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक शेदम लेरिम में ग्यांगर गांव के आमा दोर्जी युटन और साथियों से गुंचक सुम्पा डोलमा संपा लुंडु पर्शी लमसिल क्यावे शब्दन चंद्रजक तुपा एक्या और गोवा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित शाम 7 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर आवाज़ ले सकेंगे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हल्लो आकाशवाणी। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा 7:50 पर प्रादेशिक रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत फिल्म 10 से। कल रात्रि 8 बजे का समय रहेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। कल रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा

सेट नाइन आप सुन सकेंगे रात्रि 9 बजे। कल रात्रि 9:15 पर अगले दिन प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त सूचना दी जाएगी। कल रात्रि 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम जरो का समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा मनपा में। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: Rangi nasi dada Zangpo yi amandar ulam si kristo no Shedan san nanambur Rangi na utyapka Deshik lungtinga tawang Kuman bak lirimba na chazan didur Agashwane tawang Rangi zamanu tukcho ze nisongdur Tango shukbu lirim Agashwane delikari laya shusu Nana hindi ke seyo ning Shuk inji ke seyo Zizu nisning kam lenga chesan nasa
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
3: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे।

0: purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts. Department of School Education and Literacy Secretary Sanjay Kumar has said that NCERT and CBSE have jointly introduced a new curriculum on computational thinking and artificial intelligence for students from class 3 to 8. Speaking on the initiative, Mr. Kumar said the curriculum has already been rolled out. And in IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार। मीडियम वेव 107.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और FM 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की कविता। कार्यक्रम आज की कविता में आइए सुनते हैं इलाइट इंग्लिश स्कूल तवांग के 7वीं कक्षा के छात्र बोम्पा दुर्जी से एक कविता। कविता का शीर्षक है ए मैटर ऑफ टाइम।
2: Desidile, my name is Bompa Dorji and I am a student of class 7 from Elite English School. Today I will be reciting a poem. The title of the poem is A Matter of Time, written by Jimmy Osborne. I hope you enjoy this recitation. Let's begin. It's easy to let it slip, but you must not lose your grip when you are grappling with the blues through the gravel and the grit. After all that you have been through, don't stress. You are only human, see. I have come to the conclusion that perfection is an illusion. I know sometimes it's tough, but don't give up. You are good enough and I can't wait to see you shine, my little diamond in the rough. When happiness is hard to find, some days you really have to mind. But I am confident you will find your way. It's only a matter of time. Thank you.
1: इलाइट इंग्लिश स्कूल तवांग के 7वीं कक्षा के छात्र बोम्पा दुर्जी से एक कविता। कविता का शीर्षक थे ए मैटर ऑफ टाइम। इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:12 हुए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आइए आनंद लेते हैं फिल्म जब प्यार किसी से होता है फिल्म से चंद नगमे। तो कार्यक्रम का पहला नगमा ये सुनते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की युगल आवाजों में। इन फिल्म के गीतों को लिखा है आनंद बख्शी ने तथा संगीत दिया है जतिन ललित ने।

श्रोता भी आपने सुना कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में।

0: यशोधन कुमार सानू के गाए इसी नगमों के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:25 हुए हैं और अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। अपनी धरती अपने लोग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं शास्त्री थोपतन सिंह, शिक्षक एवं सचिव बोध सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र तवांग मठ में स्थापित वित्तीय चित्रों और विभिन्न मूर्तियों एवं देवताओं के महत्व विषय पर एक भेंट वार्ता।
1: आकाशवाणी तवांग को सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम आए हैं तवांग मठ और यहाँ हम शास्त्री थोपतन सिंह जी, जो कि सेंट्रल फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज के अध्यापक तथा यहाँ के सेक्रेटरी है, उनसे आकाशवाणी तवांग के द्वारा हम जानेंगे हमारे तवांग मठ के प्रवेश द्वार में जो चित्र है उनके महत्व को तथा मठ में प्रवेश के पश्चात जो हमारे मुख्य प्रार्थना कक्ष है जिसे हम दुकान कहते हैं उनका चित्र एवं प्रतिमाओं के महत्व को। शास्त्री थोपतन सिंह जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को यहाँ के चित्र एवं प्रतिमाओं के महत्व को विस्तार से समझें। तो अभी हम है प्रार्थना कक्ष में।
2: ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 8 प्रकार का जो बोधिसत्व है ना, तो बोधिसत्व इस मीन्स जो उसके पास जो बोधिचित्त होता है ना, तो उसको बोधिसत्व नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पर 8 प्रकार का जो बोधिसत्व है ना, तो नाम पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो है जांचू सेम्पा कुंदु सम्पा है ना, बोधिसत्व संबंध बत्तवा हुई है ना। इसके बाद फिर जांचू सेम्पा जम्बेल बोल के एक है ना, मैत्रीय बोल को सो ना, बोधिसत्व तो आप जानते हैं ना। इसके बाद फिर जांचू सेम्पा नमगे यिंगपो, नमगे यिंगपो तो इस तरह से आकाश कर पो के लिखा है ना, ये भी एक बोधिसत्व का नाम है। और ये जय जांचू सेम्पा ट्रिबन नमसेल बोलते है ना, इस तरह से आप 8 प्रकार का बोधिसत्व मिलेगा। जांचू सेम्पा से यिंगपो, जांचू सेम्पा चंद्र सिख अब लोग तीश्वरा नाम से जाना जाता है। और ये जांचू सेम्पा छगनाथ दर्जे, इसके बाद जांचू सेम्पा जम्बिल मतलब मंजूश्री को जाना जाता है। तो यहाँ पर जो 8 प्रकार का बोधिसत्व जो ये है, और पहले हम लोग कहाँ पर रखता था, ये लॉर्ड बुद्ध का पीछे में रखता था, तो बाद में फिर वहाँ पर कोई दर्शन कर नहीं पाते, फिर हम लोग आगे लेके आया इसको ना। तो यहाँ पर रखने का वजह जो ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो 5वें दलाई लामा का प्रतिमा है और उसका नाम है ngawang lobsang gyatso नाम से जाना जाता है ना। और बौद्ध धर्म में जहाँ भी मठ होता है वहाँ पर एक संरक्षक या संरक्षिका होता है। सो यहाँ पर जो संरक्षिका है ना, संरक्षिका मीन्स एक फीमेल का है, फीमेल एक डेटी है, तो उसका नाम है श्रीदेवी नाम से जाना जाता है ना। तो श्रीदेवी जो हम लोग जो बौद्ध धर्म में कहते हैं पंडल हामू नाम से जाना जाता है, तो ये यहाँ का जो मेन एक संरक्षिका है। और ये जो कब किसने दिया था, 5वें दलाई लामा के समय में ये गुंबद जो स्थापित हुआ था, तो 5वें दलाई लामा के समय में जब यहाँ पर जो मठाधीश थे वो मेराक लामा लोटी क्याचो, तो वो तिब्बत में गया, फिर विप दलाई लामा से मुलाकात हुआ है। तो मुलाकात होने के बाद फिर उसने यही मांगा था कि मेरा मठ में एक प्रोटेक्टर चाहिए, एक संरक्षक चाहिए ना। तो फिर 5वें दलाई लामा ने अपना जो, जैसे कि हम लोग मृत्यु हो जाते हैं तो उस समय यहाँ से खून एक बहता है, जंग कर्म बोल के हम लोग जाना जाता है, तो यहाँ से एक खून से लिखा हुआ पंडल लामो का एक थंगा है, एक प्रतिमा है, एक डेटी है ना, 5वें दलाई लामा ने दिया था। तो इसका भी एक कहानी है आपको, हम विस्तार से आपको सुनाएंगे। जब यहाँ का जो मठाधीश थे मेराक लामा लोटे ग्यात्सो, तिब्बत में जाने के बाद फिर मुलाकात हुआ है 5वें दलाई लामा के समय में, तो उसने एक मेरा मठ जो पूर्ण रूप से स्थापित हुआ है तो उसको एक संरक्षक, एक प्रोटेक्टर चाहिए, तो उसने ये अनुरोध किया था। इसके बाद 5वें दलाई लामा ने दिया है। देने के बाद फिर उसने रास्ते में आके खुल दिया था। खुलने के बाद यहाँ गुम्बा में न आने से पहले, ये एक कंटेस्ट एक ओरल एक कहानी है एक ना, तो फिर खुल दिया तो उसका मन में ये लगा कि मेरा मठ तो भिक्षु का एक मठ है, ये एक सन्यासी या नंद लोग का नहीं है। तो

के मन में ये एक आशंका एक संदेह पैदा हुआ थे, ये मन में सोचने लगा तो वो उड़ के फिर यहाँ पर नहीं आ पाया, वो जो प्रोटेक्टर जो बंधन लामो जो है ना। तो फिर उसने तिब्बत में जाके पांच दलामे से फिर रिक्वेस्ट किया गया कि तो ऐसे ऐसे कहानी हुआ है बोल के ना। तो उसने उसको ये अनुशासन दिया था कि आप अपना मठ में जाके खुलिए बोल के ना। तो फिर यहाँ पर आने के बाद खुला है, तो इसके बाद फिर यहाँ पर रखा है। तो उसका नाम भी लामो जाड्रोमा बोल के रखा गया है, जहाँ बोलने पक्षी को कहा जाता है। ड्रे मतलब जो उसका जो एक वाम जो होता है उसको ड्रे नाम से जाना जाता है। तो पहले जो थंका जो प्रतिमा जो क्या था कि एक पक्षी का जितना जो गर्म होता है उसी तरह वो थंका का भी एक गर्म करके बैठा था, मतलब इतना एक अद्भुत था। तो इसके वजह से हम जाड्रोमा नाम रखा गया था। ये तो कहानी जो 1680 का हम बात कर रहा है, तो इसका बाद 1681 से लेकर 1983 तक इसको नहीं खुला गया है। जब 1983 में जो दलाई लामा सेकंड टाइम यहाँ पर विजिट हुआ था, तो उस समय उसने ये कहा गया था कि पन्नन लामो जो कहाँ पर है, तो उसने ये बोला था कि पन्नन लामो जो जहाँ भी है उसको लेके आए। तो दलाई लामा का जो रेजिडेंस है ऊपर में थर्ड फ्लोर में है, वहां पर लेके गया। तो हम लोग मनपा जो जनजाति है वो बहुत ही उस भक्ति है, श्रद्धा है, डिवोट है। तो उसके कारण से है कि या फिर हम लोग जो अपना पूजा पाठ है वो अच्छे से ढंग से कर नहीं पाते कि ज्यादा भक्ति होने के है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग है ना, क्योंकि किसी ने भी नहीं खुला था उसको। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि ज्यादा भक्ति होने के श्रद्धा होने की वजह से ये नहीं खुला था। तो 1983 में दलाई लामा सेकंड टाइम यहाँ आया, इसके बाद उसने पन्नन लामो का बारे में पूछा तो फिर खुला, तो पूरा किरण ने खा चुका था है ना, पूरा सड़ चुका था। इसके बाद दलाई लामा ने ये आदेश दिया था कि आप इसको इस तरह से मत रखिए, इसको 6 साल या 3 साल में यहाँ का जो मन का मनपा जनजाति है और पूरा मोंग से उसको आप दर्शन देना चाहिए ना। 1983 में जब यहाँ पर दलाई लामा यहाँ पर आया तो उस पहले थंका दिया था वो तो कीड़ा ने खा चुका था, पूरा सड़ चुका था, पूरा डैमेज हो चुका था। तो फिर उसने अपना जो 14 दलाई लामा का जो हैंड प्रिंट पीछे में है एक थंका दिया है ना, तो वो थंका भी यहीं पर है। इसके बाद फिर रिसेंटली जो फिर एक प्रतिमा लेके आया था जो धर्मशाला से लेके आया था वो भी यहीं पर रखा हुआ है ना। तो फिर अभी 3 साल या 6 साल के बाद में इसको मनपा जनजाति हो, ऑल द भिक्षुगण हो, सबको दर्शन देता है दलाई लामा के आदेश के अनुसार। तो ये है। और ये जो है यहाँ का जो फाउंडर है तावांग मोनास्ट्री का फाउंडर, उसका नाम है मेरक लामा लोटे ग्यासो नाम से जाना जाता है। और जो मेरक लामा लोटे ग्यासो जो एक पांचवी दलाई लामा का मुख्य शिष्य थे वो तिब्बत में गया था। तिब्बत में जाने के बाद पांचवी दलाई लामा से मुलाकात हुआ है, इसके बाद उसने ये अनुरोध किया गया था कि मैं यहाँ पर एक मठ बनाना चाहता हूँ। तो उसका आदेश के अनुसार आई मीन द ब्लेसिंग ऑफ द फिफ्थ दलाई लामा ये गोम्बा जो उसने स्थापित किया, कब किया है 1680 में किया है ना, और 1681 में पूर्ण रूप से स्थापित हुआ है ना। तो उस समय उसने ये भी एक नियम बनाया थे, अगर परिवार में 3 लड़का होने से 20 वाला लड़का जो संन्यास बनना अनिवार्य है ना। तो अभी भी वो रूल एंड रेगुलेशन लागू है, लेकिन आज का युग में बहुत कम भिक्षु बनता है। तो आप लोग भी जानते हैं कि आजकल ज्यादा बच्चा नहीं पैदा करता है, एक कहावत भी है हिंदी में, हम दो हमारे दो ही होते हैं और ज्यादा बच्चा नहीं होता है ना। लेकिन रूल एंड रेगुलेशन अभी भी लागू है। बुद्धिज्म में 4 संप्रदाय होता है, निंगमा, साक्या, कगी एंड गेलू होता है। और ये मठ जो एक गेलू संप्रदाय का मठ है ना, तो ये आप देख रहे हैं गेलू संप्रदाय का ये एक वन ऑफ द हेड, वन ऑफ द फाउंडर उसने जो स्थापित किया गया, उसने जो अपना जो गेलू संप्रदाय को उसने सर्वप्रथम तिब्बत में उसने स्थापित किया था। तो उसका नाम है जे चोंगपा नाम से जाना जाता है ना। तो उसका जो दो मुख्य शिष्य है आप देख रहे हैं खेडुपचेन, केशवचेन नाम से जाना जाता है। और ये फोर सेक्ट जो चार संप्रदाय से पहले क्या था, हम लोग का तिब्बत में एक धर्म था वो बुद्ध रिलीजन नाम से जाना जाता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं शमेनिज्म नाम से जाना जाता है। तो शमेनिज्म जो क्या था कि पूरा एक कम्युनिस्ट रिलीजन है, वो जानवर को मार के फिर उसको भगवान को चढ़ाया जाता है। तो बाद में जो लॉर्ड बुद्ध जो हिंदुस्तान में जो आर्य देश में जन्म होने के बाद धीरे धीरे उसका जो धर्म जो तिब्बत में फैलाया गया है। तो जब तिब्बत में धर्म फैलाया तो सर्वप्रथम यिंगमा नाम से एक संप्रदाय हुआ था, इसके बाद साक्या, इसके बाद कगी, इसके बाद गेलू नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध है इसमें जो 28 फीट है, और उसका जो दो मुख्य शिष्य है श्री पुत्र एंड मंगल पुत्र नाम से जाना जाता है। और ये स्टेच्यू जो कहाँ से लेकर आया, सोना से लेकर आया ना। तो प्राचीन काल में क्या था कि ये एक तिब्बत का हिस्सा था ना, तो क्या था कि जब सोना मोनास्ट्री जो यहाँ का जो भिक्षुगण थे जो विंटर में ना सोना में जाते थे, और वहाँ का जो भिक्षुगण सोना मोनास्ट्री बिलोंग करते वो समर में यहाँ आते थे, फिर एक एक्सचेंज प्रोग्राम साल में एक बार होते थे ना। तो बाद में ये जो प्रतिमा जो सोना से लिखा है पूरा ज्वाइन है, पूरा पीसेस है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आके फिर यहाँ पर जो जो भी करंट डालना जो भी अंदर में जो डालना है वो यहाँ पर आके डाला है ना, जिसे हम लोग सुंग नाम से जाना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है ये प्रतिमा जो सोना से लिखा है हुई है। इसके बाद ये जो आप जानते हैं सिंहासन जो दलाई लामा का है, जब भी वो यहीं पर पता है सिंहासन में आसन करते और यहाँ से वो प्रवचन देते

0: रिश्ते थे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर वो पत्र थे 1959 में, इसके बाद 1983, 1997 में, इसके बाद 2003, 2009 और लास्ट टाइम 2017 में यहाँ पर आए थे। तो वो जो उसका जो सिक्स टाइम तक विजिट थे ना, ये भी बोधिसत्व ही है, ये भी एक लॉर्ड बुद्ध है। तो जो शक्यमुनि जो नाम जो किसे हुआ है, जो गेलु संप्रदाय का जो हेड है, फाउंडर है जे चोंगापा, तो उसने लोसर में ईप ऑफ द न्यू ईयर में पताला में नुर्गुलिंगा में एक पूजा पाठ होता है। तो वो पूजा पाठ जो मल्लम चिम्बो नाम से जाना जाता है। जब लासा में जो मल्लम चिम्बो का जो उद्घाटन हुए थे, जो पूजा पाठ शुरू हुए थे, तो गेलु संप्रदाय का जो जे चोंगापा है, हेड है, फाउंडर है, उसने लॉर्ड बुद्धा के हेड पर एक मुकुट पहनाया गया था ना, इसके बाद जो नाम से जाना जाता है ना। तो तिब्बत में जोखंग बोल के अलग सा एक टेम्पल है ना, तो लोग कहते हैं कि यहाँ का जो मोनपा लोग जो ल्हासा में जाके जो को दर्शन कर नहीं पाते थे, वो यहाँ आके दर्शन करते थे। इस तरह से भी कहानी जो बुजुर्ग लोग है ना, वरिष्ठ जो भिक्षुगण है, वो कहते हैं इस तरह से कहानी है। और ये जो आप देख रहे हैं उसका जो डिसाइबल जो मुख्य शिष्य है, वो जो है एक जम और जमया नाम से जाना जाते हैं। और ये जो एक 13th सेंचुरी में तिब्बत से लेके आया है, जब ये कोम्पा जो स्थापित नहीं हुआ था उससे पहले वो वहाँ से लेके आए थे, फिर यहाँ पर रखा था, है ना। तो जम और जामिया नाम से जाना जाता है। और ये जो आप देखते हैं इसको सावा द्वीप नाम से जाना जाता है। और सावा द्वीप जो हम लोग जो संस्कृत में गुहिया समाजा नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग जो बंदा शिवा में यहाँ पर एक संधि होता है ना, एक पूजा पाठ होता है, एक हवन होता है, एक यज्ञ होता है, तो उसका प्रतीक होता है ये जो है ना। और ये जो आप स्तूपा जो देख रहे हैं, ये जो स्तूपा जो एक वन ऑफ द मॉन्यूमेंट नाम से जाना जाता है। तो मॉन्यूमेंट जो क्या है, छठवीं दलाई लामा था, यहीं पर जन्म हुआ है, तो जन्म स्थल का नाम उर्जिलिंग नाम से जाना जाता है। तो ये जो मॉन्यूमेंट जो श्री दलाई लामा का मादर्स का मॉन्यूमेंट है ना, और जो ऑर्नामेंट जेवल से वो भी श्री दलाई लामा का मादर्स का ही है
1: जी।
0: और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है फ्यूचर बुद्धा नाम से जाना जाता है, और उसको सांस में कहते हैं मैत्रेय बुद्धा है ना, और हम लोग उसको पुकारते हैं ग्यावा चांपा नाम से जाना जाता है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है तो वो लॉर्ड बुद्धा का समय चल रहा है, गौतम बुद्ध का समय चल रहा है। तो उसने दर्शन में ये कहा था कि 5000 तक इस संसार में मेरा धर्म जो रहेगा, इसके बाद धर्म पूरा मिट जाएगा, लेकिन एक बोधिसत्व आएगा ना। तो इसका कारण से इसका नाम है मैत्रेय बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा नाम से जाना जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलोसफी स्टिल वी हैव मोर देन 2400 years अभी भी बाकी है
1: जी।
0: और ये जो आप देख रहे हैं, ये तो एक मेडिसिन बुद्धा का जो महल है, फोटंग है ना। तो यहाँ पर महीना में दो बार यहाँ पर मेडिसिन बुद्धा का पूजा पाठ होता है, तो उसमें हम लोग उसको उपयोग किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको नाम है अवलोकितेश्वरा नाम से जाना जाता है। अवलोकितेश्वरा जो करुणा और दया के प्रतीक होता है, जिसे केवल चंद्र से छातों चंतों नाम से जाना जाता है ना। कपा से हजार हैंड एंड हजार जो आंख है ना, उसका जो वर्तमान में जो रिइंकार्नेशन अवतार जो हम लोग चौथवें दलाई लामा धर्मशाला में रह रहे उसको मानता है ना। और लास्ट वाला जो तारा देवी नाम से जाना जाता है, तारा देवी जो हिंदुज्म में हम लोग कहेंगे तो लक्ष्मी के प्रतीक होता है, तो बुद्धिज्म में 21 काइंड ऑफ द तारा देवी होता है, लेकिन पर्टिकुलर से 2 काइंड ऑफ द तारा देवी होता है, विच इज कॉल्ड द ग्रीन तारा एंड व्हाइट तारा नाम से जाना जाता है। जो व्हाइट तारा जो होते हैं वो दीर्घ आयु के लिए होता है, और जो ग्रीन तारा जो होता है वो प्रॉस्पिटी एंड वेल्थ के लिए होता है। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे ढक रखा है, ये भी एक प्रोटेक्टर है, ये ठिल्ले के वो होता है ना हम लोग का, जो कुबेर जो होता है ठिल्ले के वो, तो उसका जो प्रतिमा है हम लोग अंदर में रखा है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, जो आपने हमारे मुख्य कक्ष के प्रतिमा और चित्र है उनके इतने सुंदर और इतने विस्तार से हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा। अब हम जानना चाहेंगे जो प्रवेश द्वार है उनके चित्रों के महत्व को।
0: जो 4-4 डायरेक्शन होता है ना, 4 दिशा होते हैं, उसमें एक द्वार का होता है ना, द्वार का होता है, एक गेटकीपर होता है, तो उसका प्रतीक यहाँ पर बनाया गया है ना,
2: जो बाय साइड में है।
0: हाँ हाँ, वही वही, ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ, ये साउथ का है ना। तो इस तरह से ये तो हर मनुष्य में मिलता है आपको है ना, द्वार का जो है ना, ये तो एक बुद्धिज्म के प्रतीक बनाया गया है। तो इसको तो इतना ज्यादा दलाई लामा तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि जब 2017 में दलाई लामा यहाँ पर पधारे थे तो उस समय दिरांग में एक रात वहीं पर ठहरे थे। तो वहीं पर जो दिरांग गोम्पा बनाया गया है, तो उसमें इस तरह से जो द्वार का बनाया था, तो दलाई लामा ने ये उपदेश दिया है कि इसको आप इम्पोर्ट नहीं मानना है, उसके बदले में आपको क्या बनाना चाहिए, ये जीवन चक्र जो बनाना चाहिए। तो उसको बहुत ही महत्वपूर्ण लॉर्ड बुद्धा ने भी प्रवचन दिया है, और खास करके जो जो भी दलाई लामा है उसने भी यही उसमें आदेश दिया था कि जहाँ भी जो द्वार का है ना, तो वहीं पर एक व्हील ऑफ लाइफ या जीवन चक्र का प्रतिमा, एक मॉडल पेंटिंग होना चाहिए ना। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जीवन चक्र या व्हील ऑफ लाइफ नाम से जाना जाता है, और हम लोग सीपी कोलो नाम से जाना जाता है ना। तो सीपी खोलो जो इस संसार में ना, इस संसार में 6 रिलीम्स होता है।

ना छह गति जो होता है ना, वो तीन पार्ट जो बहुत एक सुगति होता है और जो तीन पार्ट जो दुर्गति पार्ट होता है ना, बैड रिलीम एंड गुड रिलीम नाम से जाना जाता है। बैड रिलीम जो एक नरक का पार्ट होता है, ये जो नरक का पार्ट है ना, ये नरक का पार्ट, हेल का पार्ट, और ये जो एनिमल्स का पार्ट है, और ये जो प्रेत हंग्री कोस नाम से जाना जाता है, तो ये जो एक बहुत ही एक बैड रिलीम नाम से जाना जाता है। और जो गुड रिलीम जो होते हैं, सुगति जो पार्ट जो होते हैं, ऊपर का आप देख रहे हैं, ये हेवन का पार्ट है ना, स्वर्ग का पार्ट है, और जो मनुष्य का पार्ट है, और ये जो डेमी गॉड है ना, सूर्य असुर नाम से जाना जाता है, इसको एक गुड रिलीम नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम लोग अभी ह्यूमन बींग्स पार्ट में है ना। तो इस छह गति के अंदर में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मूल्य जो किसको माना जाता है, वो एक मनुष्य का पार्ट को माना जाता है। तो मनुष्य ऐसा एक चीज है, सुख एंड दुख दोनों को विचित कर सकते हैं, अंतर्गत कर सकता है ना, राइट एंड रॉन्ग को दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप नमूना के तौर पर आप कह सकते हैं, जैसे आप जानवर में पैदा हुआ हम लोग ना, तो बाहर में बारिश गिरता है, बारिश गिरते उसको महसूस होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते और अंदर नहीं आ सकते। तो मनुष्य ऐसा चीज है कि सब कुछ उसको विचित कर सकते हैं, अंतर्गत कर सकते हैं। और मनुष्य का जो एक जीवन मिलना बहुत ही अमूल्य होता है, बहुत ही रेयर होता है ना, तो उसका भी एग्जाम्पल दिया गया है। तो शांतिदीप ने 400 स्टेंजा में एक एग्जाम्पल दिया गया है, समुद्र में एक कछुआ रहता था, वो कछुआ जो अंधा था ना, ब्लाइंड था वो, तो वो देख नहीं पाता था। तो समुद्र के बीच में एक ट्रैप, एक फांसी लगा होता है, एक फंदा जो लगा होता है, तो समुद्र इतना विशाल होता है, इतना वास होता है वो, तो समुद्र को हम लोग नाप नहीं पाते है ना, जैसे आकाश को हम लोग नाप नहीं पाते, उस समुद्र को हम लोग नापना मतलब मुमकिन नहीं है। तो वो फंदा जो एक ही जगह में नहीं बैठता है ना, तो उसी तरह जो अंधा, जो ब्लाइंड, जो कछुआ जो है, वो जो 100 साल में एक बार ही बाहर निकलता है, तो बाहर निकलते ही वो फंदा में फंस जाता है। तो उसी तरह मनुष्य का जीवन जो मिलना ही इस तरह से है, अमूल्य है, बहुत रेयर है। तो एक बार मिलने के बाद फिर उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको सही ढंग से इस्तेमाल एक यूटिलाइज होना चाहिए, वही बुद्धिज्म में कहता है ना। तो जो पुण्य करते हैं वो ऊपर में चला जाता है, जो पाप करते हैं वो नीचे में खींच के लेके आते हैं। और जब हम लोग इस छह गति के अंदर में जहां भी हम जन्म लेगा, जब हम लोग यहाँ से हम लोग निधन होकर हम लोग गुजर के चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाते हैं यमराज के पास। ये जो यमराज है ना, सो उसमें जो अंतर्गत करेंगे, तराजू में तोलता है आपने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, तो उसके प्रतीक आपको परिणाम जो हृदय जो भुगतना पड़ता है ना, और क्या क्या जो परिणाम है ना, पनिशमेंट क्या क्या इसमें पेंटिंग किया गया है ना, इस तरह से। इसके बाद फिर आप जो 3 सैंपल जो आप देख रहे हैं, उसको 3 पॉइजनिंग, 3 डिफाइलमेंट नाम से जाना जाता है ना। जैसे पॉइजनिंग जो क्या है, जैसे दिल जो हम लोग जितना भी यहाँ पर है, जितना भी जो दिल है, चित है, उसका कोई दोष नहीं होता है, हार्ट का कोई फॉल्ट नहीं होता है, इतना साफ होता है। लेकिन दिल के आसपास में, चित के आसपास में ये 3 जो होते हैं, ये 3 जो 3 डिफाइलमेंट है, ये 3 जो होता है, तो ये 3 जो क्या है, जो आप एक मुर्गा आप देख रहे हैं ना, तो ये सिंबल ऑफ द डिजाइन अटैचमेंट है, तो एक आकर्षित हो जाना है ना। जब भी हम आंख खुल के बाहर दिखता है, तो जो भी सामने में प्रकट हो जाता है, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। अगर 1 लाख हो तो 2 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, करोड़ चाहिए, मिलियन ट्रिलियन चाहिए, जब तक हम लोग नहीं मरेगा तब तक मुझे ही चाहिए ना, डिजाइन अटैचमेंट का सैंपल है। और जो आप स्नेक जो देख रहे हैं, वो जो है हेटेड इन एंगर का सैंपल है ना, जैसे ईर्ष्या है ना, वो करना, किसी के ऊपर में ईर्ष्या करना, इसके बाद फिर अपना काम नहीं होने से फिर एक रिवेंज लेना, एक बदला लेना, हम मन में सोचते हैं। बुद्धिज्म में ये कहते हैं कि डिजायर होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए ना, तो अगर लिमिट से हम बाहर जाएगा तो प्रॉब्लम में फंस जाता है ना। तो हेटेड और एंगर डिजायर जो कहाँ से आता है, वो जो रूट ऑफ द इग्नोरेंस, जो आप पिक जो देख रहे हो, सैंपल ऑफ द इग्नोरेंस है, अज्ञानता के कारण से, मूर्ख के कारण से है ना, इसलिए हम लोग डिजायर अटैचमेंट जो आ जाते हैं, तब जाके हम लोग नरक में गिरता है। तो हम लोग बुद्धिज्म में रिबर्थ और कर्मा को हम लोग मानता है। तो अभी जो वर्तमान में है, वो जो कहाँ से मिलता है, वो सब उसका परिणाम जो कहाँ से मिलता है, वो एक पूर्व जन्म का फल है ना। तो नेक्स्ट जन्म जो कहाँ पर जाना है, वो आपका दिल के ऊपर में निर्भर होता है। तो वही बुद्धिज्म में कहता है ना। इसका जो हम संक्षेप में आपको हमने एक्सप्लेनेशन किया गया है, बहुत डिटेल में जगह तो बहुत ही, आप तो ये एक संक्षेप में हमने एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको प्रतित्व समुत्पाद नाम से जाना जाता है, ट्रिबल इंटरडिपेंडेंट डिपिक है ना, क्योंकि हम लोग पूरा एक से निर्भर है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि हम किसी से निर्भर नहीं है, ऐसा एक चीज भी नहीं कि निर्भर नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लैप करना चाहते हैं ना, आपको 2 हाथ होना चाहिए तब जाके आवाज निकलेंगे। अगर आग जलाना है तो 2 लकड़ी चाहिए तब जाके आग जलेंगे ना। तो उसी तरह अगर हम और एग्जाम्पल देगा, तो निर्भर हम लोग सोचते हैं कि हम किसी से निर्भर नहीं है, हम किसी से डिपेंडेंट नहीं है, पर हम देखेंगे तो पूरा डिपेंडेंट है ना। जैसे कि आप हम कपड़ा पहनते हैं ना, कपड़ा जो हम अपना सोचते हैं कि

0: अपना पैसा के बाद बुद्धि से हम खरीद के पहन रहे, लेकिन इस कपड़े को कितना आदमी ने मेहनत किया होगा ना, अंतिम जाके आपको मिला है ना, पूरा डिपेंडेंट। अगर इस कपड़े पर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आके एक खाना खाता है, तो एक चावल का दाना जो हम लोग मुँह में जाते हैं, हम लोग खाते हैं अपना पैसे से खाते हैं, लेकिन चावल का दाना जो कितना आदमी ने मेहनत किया होगा तब जाके तवा में आया है। तो अगर वाकई हम सोचेंगे तो सब कुछ निर्भर होता है ना, तो उसको प्रतिभा समुत्पाद नाम से जाना चाहते हैं।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री थुपतन सिंह जी, आपने जो है तवांग मठ के अंदर के और प्रवेश द्वार के पूरे चित्र तथा प्रतिमाओं के महत्व को इतने खूबसूरत ढंग से हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं भी आपने सुना शास्त्री थुपतन सिंह, शिक्षक एवं सचिव बोध।
3: नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 के आयोजन में कथित पेपर लीक के संबंध में एक मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से मिली एक लिखित शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि उसने नीट यूजी परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी, सबूतों को नष्ट करने और सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों को रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत आने वाले अपराधों के लिए दर्ज की गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा इस महीने की 3 तारीख को की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और समर्पण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर वर्ष 12 मई को दुनिया भर में नर्सों और स्वास्थ्य सेवा के उनके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सभी नर्सों के उनके प्रति समर्पण, करुणा और मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। डॉ. शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल है। गोल्डन जुबली मेधावी छात्र पुरस्कार 2026-25 के तहत डीडीएससी पापुमपारे द्वारा आज यूपिया में एक सम्मान समारोह आयोजन करते हुए जिले के कक्षा 3 से 12 तक के शीर्ष 3 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। विभिन्न निजी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कुल 29 विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए नकद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। गोल्डन जुबली मेधावी छात्र पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह के तहत विद्यार्थियों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सचिव संजय कुमार ने कहा है कि एनसीईआरटी और सीबीएसई ने संयुक्त रूप से कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नई पाठ्यक्रम शुरू की है। इस पहल पर बोलते हुए श्री कुमार ने कहा है कि यह पाठ्यक्रम पहले ही लागू की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्कूल खुलने के बाद इन विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। उन्होंने ये भी जानकारी प्रदान की है कि एनसीईआरटी कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पाठ्यपुस्तक भी विस्तारित कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के बोमडिल्ला स्थित बुद्ध स्टेडियम में स्मार्ट पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड का उद्घाटन विधायक फोर दिरंग फुरपा शेरिंग द्वारा सोमवार को किया गया। ये बोर्ड एसबीआई बोमडिल्ला द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सीएसआर पहल के तहत प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सार्वजनिक संदेशों को डिजिटल माध्यम से प्रभावी रूप से प्रसारित करना है, जिसमें जन जागरूकता और सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके।

0: The Rajiv Gandhi University Research Scholars Forum, RGURSF, organized a candlelight march and vigil yesterday evening to pay tribute to late Dr. Chalak Loang, whose untimely demise deeply saddened the academic community of Rajiv Gandhi University, Doimukh. Dr. Loang, an assistant professor in the Department of Political Science at Dehradunatung Government College, Itanagar, had also served as the vice chairperson of RGURSF during 2019-20. She was widely respected for her academic contributions, particularly her research on insurgency issues in the TCL region of Arunachal Pradesh. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोता भी आपने सुना आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी तत्पश्चात अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हुए हैं। आइए आप सुनते एक देशभक्ति गीत फ्रॉम बुस्ती फ्राइट ऑफ इंडिया से अरिजीत सिंह की आवाज में। इस गीत के गीतकार है मनोज मुंतशिर तथा संगीतकार है आरको।

देशभक्ति गीत फिल्म बुज दी फ्राइट ऑफ इंडिया से। इस गीत के गीतकार थे मनोज मुंतशिर तथा संगीतकार थे आर्को। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं समय रात्रि के 8 बजने को है और अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है मोक्तो सरजोंग बस्ती से श्रिंग दुर्जी निमांग उर्फ और युग सिंह। आप सबके फरमाइश पर आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम का पहला फरमाइश फिल्म नील कमल से मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत के गीतकार है शाहिर लुधियानवी तथा संगीतकार है रवि।

0: with 30 MLAs set to support Vijay's TVK government floor test tomorrow. Chief Justice of India Surya Kant constitutes high-powered committee to prepare blueprint for modernization of courts across the country. India to host two-day BRICS foreign ministers meeting beginning Thursday to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Stock indices tank around 2% as elevated oil prices and US-Iran tensions dampen markets' confidence. And in badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advance to second round of Thailand Open in Bangkok. That is all in the news at 9. Good night.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित न्यूज एट 9। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए जाते जाते हम आपको कल प्रसारित की जाने वाले कुछ कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण दे दूं। कलों पर 2:30 पर सुनेगा हिंदी भक्ति गीत। कलों पर 3 आप आनंद ले सकेंगे मायूक हजारिका की आवाज में चंद असमिया फिल्मी नगमे। कलों पर 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात। कलों पर 3:33 पर सुनेगा महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कल शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक चैनल में गोंगर बस्ती के अमादोरजी यूटन और साथियों से बहुत भक्ति भजन। और कल शाम 7:10 पर सुनेगा साप्ताहिक फॉरेन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो श्रोताओं ये तो थे कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आप श्रोताओं से विदा लेने का। हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 अंग्रेजी में समाचार के तहत। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्री तंजन दुर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी सहायक श्री एंटू कुमार दास, श्री लाम सिंह और मिस शेखा देखा, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी